0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: केश ए किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुशखबरी। छा चाहो था अवां जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त केश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुन जो इलाज, ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलन जी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़न जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
10: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
10: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125257 86।
10: जी हाँ 3135525786।
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
10: सिंध जो आवाज़।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM
1: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: मुस्तकबिल हिक ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे फितना अल-ख़वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जा परॾेही सरपरस्ती हेठि कम कंदड़ प्रोक्सीज आहिनि जेके रियासत ऐं अवाम विच में विचोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहिया आहिनि। दुश्मन जूं उहे साज़िशूं क़ौम जे गॾियल अज़म ऐं रियासत जी मज़बूत ऐं फैसलाइती रद अमल सां नाकाम बणायूं वेंदियूं। ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बलूचिस्तान जे अहम शख्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत जे SQ मुलाकात कई। बलूचिस्तान जे अमुन इस्तकाम तरक़ी ऐं नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई वई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त बलूचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतनि ऐं मौक़नि जी का खोट नाहे। नौजवान मुआशिरे जो सभ खां वधीक मुतरिक ऐं उमीद भरियो हिसो आहिनि, तंहिं करे खेनि बाख़्तियार बणाइण ऐं क़ौमी तरक़ीअ में किरदार अदा करण जा मौक़ा फराहम करण पायदार तरक़ीअ लाइ इंतिहाई अहम आहिनि। शाम जे परॾेही वज़ीर असद हसन अल शुबानी जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात। दिफ़ा ऐं सलामती जे शोबनि में राब्तनि खे वधाइण ऐं पाकिस्तान ऐं शाम विच में ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि खे वधीक मज़बूत बणाइण जे अज़म जो वर्जाउ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान ऐं शाम विच में पुराणनि भाइराणनि लाॻापनि खे उजागर कंदे आलमी अमुन ऐं इलाक़ाई इस्तकाम बाबति पाकिस्तान जे मौक़िफ़ पेश कयो ऐं गॾियल सलामती जे चैलेंजनि खे बि मुंहुं ॾियण लाइ सहकार ऐं गॾियल कोशिशनि जी अहमियत ते ज़ोर भरियो। ISPR मूजिब शाम जे परॾेही वज़ीर इलाक़ाई अमुन ऐं इस्तकाम जे फ़रोग में पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौजनि जे पेशावराणे किरदार खे साराहियो।
2: पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो खाली करते हैं, ड्रॉन से भेजे चले गए, ड्रॉन से भेजे।

0: पीटीआई बानी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप बाद वापस हडियाल जेल मुंतकिल। पीटीआई बानी के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में सब सिक्योरिटी हेठ वापस हडियाल जेल आंदो वो। जरिये मौजूद पीटीआई बानी के हडियाल जेल में वापस जेल मुंतकिल वो है। डॉक्टर की छह रुकनी टीम पीटीआई बानी जो तिबी मुआइनो कर टेस्ट सैंपल वरता। पीटीआई बानी की आमद का अग शिफा अस्पताल के एग्जीक्यूटिव फ्लोर के सब जेल करार दई। अस्पताल के स्टाफ से मोबाइल फोन के इस्तेमाल से पाबंदी लागू कई वही। अस्पताल बाहरा पुलिस का वा ताला मुकर थे। आईजी इस्लामाबाद बेशिफा अस्पताल पहुंची सिक्योरिटी इंतजाम जो जायजो वरतो। पीटीआई बानी के जेल का अस्पताल मुंतकिली वे मामले ते मुशावरत लाए वजीर आजम शहबाज शरीफ से घरू वजीर मोहसिन नकवी की मुलाकात। जरिये मौजूद घरू वजीर वजीर आजम के पीटीआई बानी अस्पताल मुंतकिली बाबत ब्रीफिंग दिनी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी है पीटीआई बानी के अस्पताल मुंतकिली बाबत इंतजाम सभी के सामू आन। मुझे इतलाह मौजूद बानी पीटीआई सेहतमंद है खेस अड़ी का भी बीमारी ना जै सबब खेस घणे अरसे ताई अस्पताल में रखो वे।
1: आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑफिसर को इन्वाइट करता हूँ कि वहाँ बैठ के बात करें। और जो
0: वजीर आजम अपोजिशन के बीहर गालन की आज कर छी। वफाकी काबीना के इजलास के खिताब कदे शहबाज शरीफ ताड़ी बिन हथन से वजंदी है। अग भी हाँ भी चवा तो अपोजिशन से गालन लाए तैयार आयु। अपोजिशन मामला गालन जरिए हल करे तो जी मुआशी तरक्की जमहूरियत के हथी मिली सके।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेर पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार की इम्यूनिटी जो बेहतर थे थी। हाँ जो कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदी उनमें का भी सुई इस्तेमाल नी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जे बार के करा तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुजी मर्ज में जो महफूज रह।
5: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
7: कैश ए किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहो था अवां जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
9: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
10: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
9: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
5: 90.4 पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
6: जी हा 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
3: जी हा, 2331-25-25-786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख्सियतनि सियासी क़यादत जे HQ में मुलाक़ात कई। बलोचिस्तान जे अमुन इस्तक़ाम ऐं तरक़ी में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾेवट कई वई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियत ऐं मौक़नि जी का बि खोट नाहे। नौजवान मुआशिरे जो सभ खां वधीक मोतरिक ऐं उमीद भरियो हिसो आहिनि, तंहिं करे खेनि बाख़्तियार बणाइण ऐं क़ौमी तरक़ीअ में किरदार अदा करण जा मौक़ा फ़राहम करण पाएदार तरक़ीअ लाइ इंतिहाई अहम आहे। शाम जे परॾेही वज़ीर असद हसन अलशबानी जे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां मुलाक़ात। दिफ़ा ऐं सलामती जे शोबनि में राबतनि खे वधाइण ऐं पाकिस्तान ऐं शाम विच में ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि खे वधीक मज़बूत बणाइण जे अज़म जो वर्चाव। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान ऐं शाम विच में पुराणनि ॿाहिराणनि लाॻापनि खे उजागर कंदे आलमी अमून ऐं इलाक़ाई इस्तक़ाम बाबति पाकिस्तान जो मौक़िफ़ पेश कयो ऐं गॾियल सलामती जे चैलेंजनि खे मुंहुं ॾियण लाइ सहकार ऐं गॾियल कोशिशुनि जी अहमियत ते ज़ोर भरियो आहे। SPR मूजिब शाम जे परॾेही वज़ीर इलाक़ाई अमून ऐं इस्तक़ाम जे फ़रोग़ में पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौजनि जी पेशावराणे किरदार खे साराहियो।
2: पढ़े लिखे लोग हैं, ये चौक खाली कर रहे हैं।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पियारिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पियारियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
2: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।
3: ट्रिपल 8 1 3

मुंहिंजे वेठा साईं इंसानी रिश्ता मोहबत एतमाद ऐं बर्दाश्त ते क़ाइमु हूंदा आहिनि। जिते प्यार हूंदो आहे न हुते कॾहिं कॾहिं नाराज़गियूं बि थी पवंदियूं आहिनि, ऐं पर जेकॾहिं रोज़ रोज़ जो मामूल बणिजी वञे त रिश्तनि जी ख़ूबसूरती आहिस्ते आहिस्ते ख़तमु थियणु लॻंदी आहे। न रुगो दिलनि में फ़ासिला पैदा थियनि था, पर इंसान जे ज़हननि में सुकून बि सख़्तु मुतासिर थिए थो। के माण्हू नंढपण खां वठी नंढड़ी नंढड़ी ॻाल्हियुनि ते नाराज़ थी वञण जा आदि हूंदा आहिनि। कॾहिं देर सां जवाबु ॾियणु, कॾहिं कंहिं ॻाल्हि खे नज़रअंदाज़ करण या मामूली इख़्तिलाफ़ बि रुसण जो सबबु बणिजी वेंदो आहे। शुरूअ में उहो अमल शायदि मोहबत जी अलामत लॻे, पर जॾहिं उहा आदत बणिजी वञे त साम्हूं वारो माण्हू थकिजी पवे थो। हर वक़्तु कंहिंखे परचाइण ऐं रीझाइण आसान नाहे हूंदो। ज़िंदगी अॻे ई हौसलनि सां भरियल हूंदी आहे। जेकॾहिं हर रिश्तो ज़िद शिकायत ऐं नाराज़गी में फासी वञे न, त ख़ुशियूं ख़तम थी वञनि थियूं ऐं सुठा रिश्ता ख़तम थी वञनि था। ऐं सुठा रिश्ता उहे हूंदा अथव जिते बर्दाश्त, समुझ ऐं माफ़ी हुजे। हर ॻाल्हि ते रुसण बदिरां ॻाल्हि ॿोल सां मसलो हल करणु घुर्जे। रोज़ रोज़ रुसण जो नुक़सान उहो बि थींदो अथव त माण्हू आहिस्ता आहिस्ता अहमियत विञाइण लॻंदो आहे। शुरूअ में माण्हू परचाइण लाइ हर कोशिश कंदो आहे, पर जॾहिं नाराज़गियूं वधी वञनि थियूं त पोइ दिलि बेज़ार थी पवे थी ऐं उन करे मोहबत खे ज़िद ऐं अना जे बाहि में साड़े छॾिजे थो। त उन जे लाइ ज़िद अनाऊं जेके आहिनि उहे बिल्कुलु बि सही न आहिनि असांजे मुआशरे जे लाइ। ज़िद अनाऊं छॾे ॾियो बाबा, ऐं मोहबत सां ज़िंदगी गुज़ारियो। ज़िंदगी जी का ख़बर नाहे के आहिनि उहे बिल्कुलु बि सही न आहिनि।

रहियो आहे त ज़िंदगी ख़ुशगवार गुज़ारियो, खिलंदा मुस्कराईंदा गुज़ारियो। त प्रोग्राम में हिकिड़ो सॉन्ग बि शामिल कंदा हलंदासीं, हुन सां गॾो गॾु तव्हांखे प्रोग्राम में शामिल थियण जो तरीक़ेकार बि हिकु दफ़ो ॿीहर मां ॿुधाईंदो हलां। त पंहिंजे मोबाइल फोन जो राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एमआरओ लिखो स्पेस जो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 1 ते।

निखरनाल जो खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समाधो त मुंहिंजा मिठा साईं दोस्त जा कुझु मैसेजिस बि आहिनि उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं गॾो गॾु तव्हांखे भला भला सॉन्ग बि ॿुधाईंदा हलूं त असां सां प्रोग्राम में ॻाल्हाए ॻोठु दूरो बीहण खां शौकत अली बीहण नादर अली बीहण अली गुल बीहण अदा दूरे बीहण वारा भाउ मुंहिंजा शौकत नादर ऐं अली गुल वॾी महिरबानी तव्हांजी तव्हां मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो लख रुपया लख अहसान तव्हांजा ऐं अदाजन चवनि था गुलाब सलाम त वालेकुम सलाम मुंहिंजा मिठा हुमेरा तिना जे कलाम जी अदाजन फरमाइश कई आहे जेको डेडिकेट कनि था ज़ैन बीहण ऐं ज़रियाब बीहण रियाज़ अली बीहण खे त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं ख़ुश हुजो आबाद हुजो ज़ुल्फ़कार खे सलाम चई छॾिजो मुंहिंजे तरफ़ खां ऐं उन खे बि हिकिड़ो सॉन्ग ज़रूरु डेडिकेट करे छॾिजो महिरबानी मुंहिंजा मिठा ख़ुशि हुजो असांजे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे मोहम्मद इब्राहिम संदीलो ॻोठ खां मोहम्मद हारून संदीलो ऐं चवनि था मूंखे रऊफ़ मक्सीअ जो सॉन्ग ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं तव्हांखे रऊफ़ मक्सीअ जो बि सॉन्ग ॿुधाईंदासीं लख कुर्ब आहिनि तव्हांजा तव्हां असांजा पुराणा लिसनर आहियो तव्हांजे लाइ खोड़ सारी मोहबतूं आहिनि प्यार आहे ऐं तव्हां असांजे शो में अहिड़े तरीक़े सां शामिल थींदा आहियो त असां सां गॾु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो महिरबानी अदा तव्हांजी तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो लख कुर्ब लख अहसान तव्हांजा मुंहिंजा मिठा साईं लटको मोरी सांगड़ खां मोहम्मद सालेह लिगारी बि पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे ऐं चवनि था प्रोग्राम लाजवाब आहे त महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं अलाह साईं तव्हांखे बि ख़ुशि ऐं आबाद रखे ॻोठ पाबू वीरो थरसा अच्छा थर खां ही दोस्त जेको आहे दिलीप कुमार पाण खे ॿुधी रहियो आहे ऐं अदाजन सां गॾु आहे कुमार मेघवाड़ ऐं नवल रा मेघवाड़ ऐं दानिश कुमार ऐं अदाजन चवनि था त शो ज़बरदस्त आहे महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असांजे शो में शामिल थी सघो था ऐं शो में शामिल थियण जो तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं मारो लिखो स्पेस ॾियो स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां न 888 ते अच्छा उन सां गॾोगॾु ॿी बि तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदा हलंदासीं त तव्हां असांजे शो में शामिल थियो था त पंहिंजी एडवाइस बि ज़रूरु ॾींदा कयो प्रोग्राम जे मुतालिक़ उहा एडवाइस हुजणु घुर्जे उहा बि तव्हां ॾींदा त उन सां असांखे अञा हिन प्रोग्राम खे वधीक बहितर खां बहितर बनाइण जो जेको आहे न उहो असांखे तव्हांजी राय जे मुताबिक़ असां उनखे अञा वधीक सुठे खां सुठो करण जी कोशिशि कंदासीं।

0: सनम सुहणो हुजे साकी पीअण वारा किथे मिलंदा त लैला सिस्टर्स जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे त मुंहिंजे मिठा ताईं वक़्तु थी पियो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो। कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलंदासीं। काफ़ी महिरबानी दोस्तनि जा मैसेजिस मुंहिंजे साम्हूं बीहंदनि, पंहिंजे ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत हथनि सां ऐं दिलि ऐं चाहत सां लिखिया आहिनि। उहे मैसेज उहे बि प्रोग्राम में ज़रूरु शामिल कंदासीं ऐं तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीक़ी बि तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। हाणे ईअं आहे त वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, हलंदासीं ब्रेक जी तरफ़। ब्रेक खां वापसि ईंदासीं, वापसि ईंदासीं त तव्हांजा ॿिया बि मैसेज मुंहिंजे पैनल ते मौजूदु हूंदा। प्रोग्राम जे आगाज़ में तव्हांजा मैसेज शामिल करे तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जा सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदा। तेसिताईं तव्हां छा कंदा? कुझु बि न कंदा, ॿुधंदा रहंदा GFM नेटवर्क।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
4: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हाँ गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
4: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
1: जी हाँ 2310-31-25-786
4: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

गरीबो बिहण खां चने सर बिहण पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे, जेको शायर यूनस बिहण उन सां गॾु आहे। प्यारा दिलशेर त्रिवेणे जी अदा जन फरमाइश कई आहे त हाज़ुर मुंहिंजा प्यारा साईं दिलशेर त्रिवेणे जो बि तव्हांखे कलाम ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। ऐं फिल वक़्तु मुंहिंजी प्ले लिस्ट में मौजूदु आहे रऊफ़ बख़्शी, अचो त रऊफ़ बख़्शी खे इंजॉय कयूं।

रऊफ बख्शी जो खूबसूरत वेह दिल में ऐं ईअं ई हूंदो आहे, घर मुफ़्त जो हूंदो आहे त कड़वी माण्हू वेही वेंदो आहे, पर वरी उन खां पोइ जेकी तकलीफ़ थी आयो आहे। दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि असांजे शो में। हलूं, अस्सलाम।

वालेकुम भा गुलाब खान कहिड़ा हाल आहिनि अवां जा? वालेकुम असलाम भाउ, मुंहिंजो आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो ऐं अदा, मां बिल्कुलु ठीकु ठाकु आहियां। तव्हां ॿुधायो, तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो, तव्हांजी तबियत सही आहे ऐं उमेदु आहे त अलाह ताला तव्हां ॾे ख़ैरियत कई हूंदी। मुंहिंजा मिठा साईं, मुंहिंजे तरफ़ खां अव्हांखे खोड़ दफ़ा भलीकार, तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। ॻोठु मोहम्मद तैयब तुनियो खां हबीबुल्ला तुनियो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे ऐं चवनि था सौंग ॿुधाइजो, चंड जो टुकड़ो लॻे थो अॼु त तूं। शमन अली मीराली जी आवाज़ में आहे। शमन अली मीराली यार ॾाढो ज़बरदस्त सिंगर आहे, मुंहिंजो पसंदीदा आहे बिल्कुलु। ऐं कोशिश कंदासीं अदा हबीबुल्ला तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो मां सॉन्ग ॿुधायां। ॻोठु मोहम्मद तैयब खां हबीबुल्ला भाजन जो ॿियो मैसेज ऐं साॻी हुन में फरमाइश लिखियलु आहे त प्यारा बिल्कुलु तव्हांजी पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूरु प्ले कंदासीं। ॻोठु हाजी ग़ुलाम ख़ासि खे ली लॻ झंडो मरी या मोरी आहे या मरी आहे, उन खां ऐं क़ुर्बान अली ख़ासि खे ली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। महिरबानी अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। क़ुर्बान साईं, तव्हां सदाईं शो में शामिल थींदा आहियो, उन जे लाइ तव्हांजा लख क़ुर्ब लख अहसान। ऐं ॻोठु मोहम्मद तैयब खां अदा हबीबुल्ला जो हीउ टियों मैसेज आयो आहे। बिल्कुलु अदा तव्हांखे पक सां हाणे मां ॿुधाईंदुमि, तव्हां बेफ़िक्र थी वञो। ऐं महिरबानी प्यारा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो। ऐं फुलजी स्टेशन खां असांजो प्यारो भाउ किराए डॉक्टर हसीना सूमरो ऐं डॉक्टर कैप्टन मरियम कोरे जो साहिबा ऐं आज़ाद अली खोसो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधनि पिया। महिरबानी तव्हांजी अदा। ऐं चवनि था असलाम वालेकुम प्यारा भाउ गुलाब खान। वालेकुम असलाम अदा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। महिरबानी तव्हांजी खानवाण खां वाहिदु ख़ासि खेली जो ही ॿियो मैसेज मुंहिंजे शो में शामिल। महिरबानी प्यारा तव्हांजी बि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, लख क़ुर्ब तव्हांजा लख अहसान। त प्रोग्राम में तव्हांखे हुमेरा चन्ना जो हिकिड़ो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे ऐं उन जे तरफ़ हली करे तव्हांखे हुमेरा चन्ना जे आवाज़ में सॉन्ग ॿुधाईंदा, छो जो हुन जूं ॿ फ़रमाइशूं अची चुकियूं हुयूं त सोचियोसीं त हुमेरा खे हाणे मौकियो ॾिजे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3-41-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हुमैरा चरण जो खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समातूं त मुंहिंजा मिठा साईं सवेल तव्हांखे मां शेयर ॿुधायो न त उस्ताद बुख़ारी चवे थो त हर को महांगो आहे सस्ता असां आहियूं, हर को महांगो आहे सस्ता असां आहियूं, हर कोई थो लताड़े ॼण रस्ता असां आहियूं। हीउ शेर समाजिक तारीख़ी तल्ख हक़ीक़त खे बयानु करे थो। उस्ताद बुख़ारी चवे थो त अॼु दौर में हर शइ ऐं हर माण्हू पंहिंजी क़ीमत वधाए रहियो आहे, पर असां अहिड़ा माण्हू बणिजी विया आहियूं जिन जी कदुरु ऐं अहमियत घटिजी वई आहे। हर को पंहिंजे मफ़ाद जे लाइ असांखे इस्तेमाल करे थो ऐं असांजी असांजे अहसासनि ऐं इज़त ऐं हक़नि खे लताड़े अॻिते वधे थो। अॻिते चए थो रस्ता असां आहियूं, हिकु तमामु गहरी तशबीह आहे जीअं रस्तनि खे हर माण्हू पंहिंजे मंज़िल ताईं पहुचण जे लाइ लताड़े गुज़रे थो न, तीअं ई कुझु माण्हू बि असांखे पंहिंजे मक़सद ताईं पहुचण जो वसीलो सम्झनि था। ऐं हीउ शेर दरअसल बेक़दरी, इस्तेहसाल ऐं ख़ुददारी जी घटिताई ऐं समाजी नाइंसाफ़ियुनि ख़िलाफ़ हिकु दर्द भरियो आवाज़ आहे। अहिड़े तरीक़े सां उस्ताद बुख़ारी जी शायरी मज़ाहमती शायरी रही आहे। उस्ताद बुख़ारी जो तालुक़ु दादू सां आहे ऐं दादू कुझु वक़्तु अॻु में बल्कि ज़िला त हाणे चेंज थियो आहे, हिन जो जाम शुरू थियो आहे। सिंध जो वॾे में वॾो ज़िलो हुयो। उस्ताद बुख़ारी जी शायरी रुगो सिंध में न बल्कि पूरी दुनिया में उस्ताद बुख़ारी जी शायरी ॻाई वेंदी आहे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां। त उस्ताद बुख़ारी जी शेर हुयो ऐं तव्हांखे मां ॿुधाईंदो हलां, तव्हां असांजे हिन शो में शामिल थी सघो था बज़रिया SMS ऐं SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, उते वञी करे लिखो MRO स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जे शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 ते।

दोस्त ते कुछ मैसेजेस आहिनि उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं। असां सां गॾु आहे, केरु आहे अदा जन पंहिंजो नालो लिखियो आहे छा? अच्छा, हक़ मौजूद, सदा मौजूद। अदी असांजी लिखी थी डॉक्टर हसीना सुमरो ऐं बदीन खां लिखी रही आहे, चवे थी अदा सवे तव्हां असांजो मैसेज ग़लति पढ़ियो हुयो। बिल्कुलु ईअं ई हुयो, ग़लति मूंखां मैसेज पढ़जी वियो हूंदो ऐं शायदि स्पेस जी जेका आहे न, तव्हां जेको मैसेज लिखियो हुयो न, उन स्पेस मुकमल ख़तमु हुयो, ईअं गॾियल सॾियल मैसेज हुयो, जंहिंजे करे असां खां ग़लती थी वई। ऐं डॉक्टर हसीना सुमरो जेका आहे उहा किथां बदीन खां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल थी आहे, बदीन खां पाण खे ॿुधी रही आहे, मातली स्टेशन खां पाण खे ॿुधी रही आहे। महिरबानी अदी हसीना, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी वियो। ऐं फौजिया सुमरो जे कलाम जी फरमाइश कई अथनि, हाज़िर फौजिया सुमरो जो फोल्डर भरियो पियो आहे असां वटि। फौजिया सुमरो तमामु बहितरीन रागी आहे ऐं न सिर्फ़ इहा मातली बदीन ज़िले में ॿुधी वेंदी आहे, बल्कि पूरी सिंध में, पूरी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ॿुधी वेंदी आहे। ज़रूरु तव्हांखे दिलि जा कयो फौजिया जे आवाज़ में कलाम ॿुधाईंदुसि। गुट मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदाजन जो हीउ टियों मैसेज आहे, या लॻभॻि मुंहिंजे ख़्याल में चोथो मैसेज बि चई सघिजे थो, अदाजन जो असांजे शो में शामिल थियो आहे मैसेज जे ज़रिए चारि दफ़ा। महिरबानी अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, लख कुर्ब तव्हांजा, लख अहसान। असांजे प्रोग्राम में असां सां गॾु आहे फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो, अदा पठाण। फौजी साहब महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, कुर्ब तव्हांजा ऐं अलाह ताईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखे। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां असांजे शो में शामिल थींदा कयो।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3141-230
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
7: पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03132525786
3: जी हा 2315525786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

प्रोग्राम में दोस्तों कुछ मैसेज शामिल कर हल्दी असा सा गडा है मोहम्मद तैयब थेबो गोठ का हबीबुल्ला थेबो आदा जन खोड़ सारा मैसेज आया आदा तह पसंद जो सॉन्ग प्ले किया उम्मीद है वो बुधो होंद तमाम घड़ी मेहरबानी तवजा प्रोग्राम में शामिल थे असा सा गडा है नूरपुर का अली नवाज पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे रऊफ़ मक्सीअ जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे ऐं चवनि था या अली मदद मौला अली मदद मुंहिंजा मिठा साईं महिरबानी तव्हांजी तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो हुन जे लाइ लख कुर्ब लख अहसान ऐं तव्हांखे मुंहिंजे तरफ़ खां खोड़ दफ़ा भलीकार त असांजे प्रोग्राम में वधीन खां डॉक्टर हसीना सूमरो प्रोग्राम ॿुधी रही आहे चवे थी अदा असांजी फरमाइश पूरी कयो हाज़ुर बाबा तव्हांजी फरमाइश हाणे ई असां पूरी कंदासीं जेके डेडिकेट कंदा कैप्टन मरियम कुरेजो ऐं फौजी पठाण खान खे महिरबानी हसीना तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी आहियो ऐं तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग तव्हांखे असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं।

त तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में अहिड़े तरीक़े सां शामिल थी सघो था। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं आर ओ लिखो स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखी करे मोकिलियो असां 888-1 ते प्रोग्राम में शामिल कंदा। फौजा सुमर जो ख़ूबसूरत आवाज़ ऐं उन खे उमेद त तव्हां ऐं असां सभु गॾिजी इंजॉय कंदासीं।

फौजा सुमर जी खूबसूरत आवाज ऐं तव्हांजो सुंदर तमातो त मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था बज़रिए एस एम एस ऐं एस एम एस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। ऐं जिन दोस्तनि जा मैसेजिस असांजी शो में आया आहिनि त उहे बि पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं।

0: अवामी शायर आजिज़ अमानुल्लाह विस्तड़ो ऐं चवनि था अनवर विस्तड़ो जो कलाम असांखे ॿुधायो ऐं डेडिकेट कनि था भूरो खान लाखो ग़ुलाम सरवर बाघाई ऐं अलह ॾितो खोखर। अदा साईं महिरबानी तव्हांजी भाउ मुंहिंजा आजिज़ अमानुल्लाह विस्तड़ा साहिब तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो, मूंखे तमामु घणी ख़ुशी थी आहे। तमामु पुराणा सीनियर लिसनर्स आहियो तव्हां, उन सां गॾोगॾु जेके जन दोस्तनि खे तव्हां कलाम डेडिकेट कयो आहे उहे बि तमामु पुराणा लिसनर आहिनि, जीअं मोरो एफ एम 88 जा बहितरीन ॿुधंदड़ आहिनि। साईं अलाए ॾितो खोखर साहब हुजे या ग़ुलाम सरवर बाघाई हुजे या भूरो खान हुजे या अवां हुजो, तमामु घणी ख़ुशी थी मूंखे तव्हांजो मैसेज ॾिसी करे। अलाह से तव्हांखे ख़ुशि रखंदो, आबाद हुजो ऐं वॾी महिरबानी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। असां सां गॾु आहे शहबाज़ अली खोसो डॉक्टर हसीना सुमरो ऐं चवनि था गुलाब खान असांखे मुख़्तियार शीदीअ जो कलाम ॿुधायो त तव्हांजी पसंदि जो मां तव्हांखे कलाम हिन शो में ॿुधाए चुको आहियां ऐं उहो फौजा सुमरो जे आवाज़ में हुयो। उमेदु आहे तव्हां ॿुधो हूंदो, तव्हांखे पसंदि बि आयो हूंदो ऐं तव्हांजे लाइ ई प्ले कयो हुयो। महिरबानी तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। ॻोठ उमेद अली ज़रदारी खां ग़ुलाम सरवर बाघाई पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चए थो सर सलाम। त वालेकुम सलाम साईं हुजा, कहिड़ा हाल नवां जा? ठीकु आहियो हुते वेसे काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ तव्हांजो मैसेज पंहिंजे पैनल ते पढ़ी करे तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे। तव्हां कीअं आहियो? ठीकु आहियो ऐं चवनि था प्लीज़ अताउल्ला ख़ान जो असांखे कलाम ॿुधायो ऐं डेडिकेट करे थो भूरो खान लाखो खे ऐं आजिज़ अमानुल्लाह विसड़ो खे। महिरबानी मुंहिंजा प्यारा भाउ, तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। अदाजनि जो ॿियो बि ॻोठ उमेद अली ज़रदारी खां मैसेज आहे ग़ुलाम सरवर बाघाई भाउजनि जो ऐं उन में बि सलाम चयो अथनि त वालेकुम सलाम ऐं अताउल्ला जे कलाम जी हुते बि फरमाइश कई आहे ऐं डेडिकेट कयो आहे साॻियाई दोस्त भूरो खान लाखो ऐं आजिज़ अमानुल्लाह विसड़ो खे। महिरबानी प्यारा, तव्हां मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो, तमामु घणी ख़ुशी थी आहे ऐं मुख़्तियार शीदी जी कलाम जी फरमाइश कई आहे कि अनॉन माण्हू मतिलब उन नालो पंहिंजो कोन लिखियो आहे ऐं सिर्फ़ इहो चयो आहे त मुख़्तियार शीदीअ जो कलाम ॿुधायो त हाज़िर तव्हांखे बि मुख़्तियार शीदीअ जो कलाम ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। असां सां गॾु आहे मीरपुर ख़ासि खां अब्दुल्ला महर ऐं चवनि था असलाम अलैकुम। त वालेकुम असलाम भाउ अब्दुल्ला, चवनि था भाई आपका शो नाइस है, ज़बरदस्त है। महिरबानी मुंहिंजा मिठा, तव्हां असांजे शो खे पसंदि करे रहिया आहियो, अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। रज़ा हुसैन ॻोठ बसीरो खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं खैरपुर तालको आहे फेज़गंज उतां खां ई अदाजन प्रोग्राम ॿुधे रहिया आहिनि ऐं चवनि था मेरी बेटी की सालगिरह आहे जिसका नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा राजपर, कोई अच्छा सा सॉन्ग सुनाओ, वो स्कूल गए हैं। जी हाँ बिल्कुल, ढो सुठो कम है, उनकी सालगिरह है, मल्हायो। नंढी नंढी खुशियों होंदियूं आहिनि, ज़रूरु करणु घुर्जनि, पर स्कूल वञी वियो आहे इहा अञा वधीक ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे, छो जो असांखे पंहिंजे बचनि खे हिकिड़ो महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ॾियणो आहे त उन्हनि खे तालीम ॾियणी पवंदी। दुनिया ॾिसो केॾी तरक़ी करे रही आहे, दुनिया किथे वञी पहुती आहे ऐं अञा असां सिंध जा माण्हू टिकटॉक ते जंहिं महिल वञूं था त तंहिं महिल असांजा जेके हिन दौर जा शाइर आहिनि, वॾा वॾा शाइर जेके पाण खे वॾा वॾा शाइर सम्झनि था, उहे नौजवान नसलनि खे ख़बर छा डिलीवर करे रहिया आहिनि। उहे नौजवान नसल खे फॾो फसाद डिलीवर करे रहिया आहिनि। हिकु हफ़्ते में तुंहिंजो पलान थींदो, तोसां हीअं थींदो, तोसां अहिड़े तरीक़े सां थींदो, अहिड़े क़िस्म जी शाइरीअ ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे असांजे सिंधी नौजवान नसल जो। पर असां जेके वालदेन आहियूं, असांजो इहो इख़लाक़ी फ़र्ज़ु आहे त असां पंहिंजे बचनि खे इन टिकटॉक वारी सोसाइटीअ मां कढी पंहिंजी सोसाइटीअ में इन कयूं, जिथे तरबियत टिकटॉक न करे असां ख़ुदि हुननि जी तरबियत कयूं ऐं उन्हनि खे असां तालीम जहिड़ो ज़ेवर ॾियूं, पोइ चाहे नियाणी हुजनि या पुट हुजनि, उन्हनि सभिनी खे असां तालीम जहिड़ो ज़ेवर ॾियूं। इहा ॻाल्हि सिर्फ़ु हिकु फ़र्द जी न आहे, या इन सॼे मुआशिरे में जेके बि माण्हू आहिनि उन्हनि सभिनी जे लाइ आहे त असांखे गॾिजी करे उहो करणो पवंदो। पंहिंजे वालदेन जी खे अख पटणी पवंदी, जेकर असां वक़्त सिर अख नथा पटियूं न, यकीन कयो तमामु वॾे नुक़सान में असां ईंदासीं, छो जो असांजो नसुल जी जेका तरबियत थी रही आहे न, यकीन कयो उहा तरबियत असां न पिया कयूं, उहा तरबियत ख़बर आहे केरु पियो करे, उहा तरबियत पियो करे टिकटॉक या अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं एप्लीकेशन्स जेके असांजे नौजवाननि जी तरबियत करे रहियूं आहिनि। उनमें गैर इख़लाक़ी मवाद सां गॾोगॾु अलाए कहिड़े क़िस्म जो मवाद मौजूदु आहे जिथे ॿार उनखे ॾाढो ध्यान सां ॾिसनि था। जेके नौजवान छोकिरा आहिनि उहा त छॾियो, पर नंढा जेके ॿार आहिनि जंहिंजी उमिरि 5 खां 7 साल आहे, जेकर उन्हनि जे हथ में बि वालदेन मोबाइल फोन नथा ॾियनि त उहे दाहूं करण में शुरू थी वञनि था। उन्हनि में ॿारनि जो बिल्कुलु कसूर न आहे, मां इहो सम्झंदुसि त उन में कसूरवार असां ई आहियूं जो असां पंहिंजे ॿारनि खे अहिड़े क़िस्म जी आदत ख़ुदि ब ख़ुदि विधी आहे। अगरि का माउ घर में कमकार करे रही आहे ऐं उनजो ॿार उनखे तंग करे रहियो आहे, जेको उहो कमु न पई करे सघे, डिस्टर्ब थी रही आहे, त पोइ उहा छा थी करे उहा हिकदमि ॿार खे रिझाइण जे लाइ दिलि विंदराइण जे लाइ उन जे हथ में मोबाइल फोन ॾेई थी छॾे ऐं पाण पंहिंजा ॿिया कमकार करण में शुरू थी वञे थी। त अहिड़ियूं जेके माइरूं आहिनि उन्हनि माइरुनि खे हथ ॿधी इल्तिजा कंदासीं त तव्हां ॿारनि खे मोबाइल फोन खां परे कयो। कमु जेको तव्हांजो रहिजे थो घर जो न ख़ैरु आहे, भला जेकर उहो अधु कलाक लेट थियो त को मसइलो कोन्हे, को तव्हांखे थोरी तकलीफ़ अचे थी, पर तव्हां पंहिंजे ईंदड़ नसल खे सिक्योर कयो, ईंदड़ नसल खे तव्हां महफ़ूज़ बणायो त जीअं असांजो ईंदड़ जेको नसल आहे न उहो इन क़िस्म जी जेकी गैर रवायती रस्मूं आहिनि, गैर रवायती जेकी हरकतूं आहिनि उन्हनि खां बची सघंदो। त प्रोग्राम में वक़्तु थिए पियो, ब्रेक जो हलंदासीं ब्रेक जी तरफ़, ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदासीं ऐं वापसि अची करे तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तव्हांजे पसंदि जा ज़बरदस्त ज़बरदस्त सॉन्ग। तेसि तोड़ी केॾां बि न वेंदा, ॿुधंदा रहंदा सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ GFM नेटवर्क।
1: It's 12:30 p.m. This Sindh ki ho to aawaz bhi Sindh ki hai. GFM 88 network. GFM 88 network. Sindh ki aawaz.
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे। त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हद कोन्हे, कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे त सभिनी खे बूस्टर डोज लॻाए।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842।
6: خوشخبری خوشخبری صاف ۽ شفاف پاڻي صحت مند زندگي جي ضمانت
7: اوهان جي پنهنجي شهر ماتلي ۾ سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر 1.5 سال کان خدمت ڪري رهيو آهي سندھ پيور ڊرنڪنگ واٽر اعتماد جو نالو منرل واٽر اوزينيٽيڊ يوريفيٽيڊ
6: جيڪو پيش ڪري ٿو 330 ملي ليٽر 500 ملي ليٽر 1.5 ملي ليٽر پاڻي جي بوتل
7: 6 ليٽر پاڻي جي بوتل ۽ ٻيون پاڻي جو بوتلون متعارف ڪرائي رهيو آهي
6: ان کان علاوه اسان وٽ ريفل جي سهولت پڻ سستي اگتي موجود
7: اواں جے اعتماد کے قائم کندے اواں جی ضرورت جو خیال رکھدے
6: آفس ہو جائے یا گھر یا کاروبار شادی ایں بین تقریبات لائے ہانی اساں سا رابطہ کرو اساں وٹ ماتلی شہر واسطے لائے ہوم ڈیلیوری جی سروس پر موجود آہے ودھیک معلومات لائے موبائل نمبر 0371800-3920
7: ایڈریس سندھ پیور ڈرنکنگ واٹر ویجو سونیری بینک بدین روڈ ماتلی
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4
8: کیا وہاں پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا ہو
9: تو پوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
8: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
9: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
8: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
9: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
8: 0331-2525-786
9: جی ہاں 3615-2576
8: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
9: سندھ جو آواز

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात।
1: जो जिक्र ही ना है उन में सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ हिकड़ी अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हियूं लिखियलियूं आहिनि जेके असांजे मुआशरे जे लाइ तमामु घणियूं ख़तरनाक आहिनि। उन जे लाइ असां सभिनी खे इहो घुर्जे त असां अहिड़े क़िस्म जी शायरी खां लातालुकी कयूं ऐं अहिड़े क़िस्म जी शायरी खे ख़ासि तौर ते पाण त ॿुधणु छॾियूं पर असां पंहिंजे औलाद खां बि उन्हनि खे परे रखूं। त मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में बि शामिल थी सघो था ऐं अहिड़े क़िस्म जी राय तव्हां असांजे प्रोग्राम में रखे सघो था, ॾेई सघो था। उन जे लाइ तव्हांखे पंहिंजे मोबाइल फ़ोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में वञणो पवंदो, MRO लिखणो पवंदो, स्पेस ॾेई ऐं नालो लिखणो पवंदो पंहिंजे ॻोठ ऐं पंहिंजे शहर जो, ऐं मोकिलिबो 888-1 ते। दोस्त जा कुझु मैसेजिस आहिनि उन्हनि खे बि शामिल कंदा हलंदासीं। खानवाण खां वाहिद वश ख़ासि खेली पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो बेस्ट प्रोग्राम आहे। मुमताज़ लाशारी जो कलाम जी अदा जन फरमाइश कई, हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं। फुलजी स्टेशन खां फौजी पठाण खान खोसो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो अस्सलाम वालेकुम प्यारा माण्हू। वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा भाउ प्यारा साईं, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, असांजी दुआ आहे तव्हां ख़ुशि हुजो। असां सां गॾु आहे केर आहे असां सां ॻोठ हाजी ग़ुलाम मोहम्मद ख़ासि खेली खां मोहम्मद दीन ख़ासि खेली आहे, चए थो उमेदु आहे तव्हां ख़ैरियत सां हूंदा। जी असां बिल्कुलु मां ख़ैरियत सां आहियां, ॾाढे फस्ट क्लास लॻो पियो आहियां, तव्हांजी दुआऊं आहिनि, मां उमेदु कयां थो तव्हां बि बिल्कुलु ख़ैरियत सां हूंदा। महिरबानी मिठा। शहबाज़ खोसो पाण खे बदीन खां ॿुधी रहियो आहे, डॉक्टर हसीना सुमरो पाण खे ॿुधी रहियो आहे, मुख्तियार शिद जे कलाम जी फरमाइश कई अथनि। महिरबानी मुख्तियार शिद जो कलाम बि अव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, पर हिन वक़्तु असांजे प्ले लिस्ट में मौजूदु आहे अताउला ईसा खैलवी।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
1: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301043842।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻारायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
5: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
3: जी हा 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

मुख्तार सिद्धी जो खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजूं समातूं अधु सिंधी अधु उर्दू सॉन्ग आहे ऐं दोस्तनि जी फरमाइश हुई, काफ़ी मैसेजिस आया हुया दोस्तनि जा त असांखे मुख्तार सिद्धी जो कलाम ॿुधायो त बाबा मुख्तार सिद्धी प्ले कयो आहे जेको तव्हां ॿुधी रहिया आहियो। दोस्तनि जा मैसेजिस आहिनि प्रोग्राम जे आख़िर में, उहे बि शामिल कंदा हलूं। अस्सलामु अलैकुम प्यारा मिठा मोहबती माण्हू असांजा भाउ गुलाब खान बहण साहब। वालेकुम असलाम मुंहिंजा मिठा प्यारा भाउ, तव्हां बि मोहबती इंसान आहियो साहब, असां न आहियूं ऐं असां तव्हांजा भाउ रहियूं। मौला तव्हांखे ख़ुशि रखे। अदा जन फौजी पठाण खान इहो मैसेज कयो आहे ऐं चवे थो असांजा मैसेज पूरा कोन था पढ़ो। अदा तव्हांजा मैसेज जेके अचनि था न मूं वटि जेके पहुचनि था उहे मां पूरा पढ़ां थो। हाणे तव्हां लिखो था मैसेज सिंधीअ में, हाणे जेकर सिंधीअ में तव्हां मैसेज लिखो था त उहो अनकम्प्लीट थी मूं वटि पहुचे थो। उहो मिसिंग टेक्स्ट जे मतिलबु हिकिड़ी शिकिल सां मूं वटि पहुचे थो, जंहिंजे करे तव्हांजा मैसेज अगरि रहिजी था वञनि त अधु इन जे करे रहिबा हूंदा। बरहाल अदा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। बादल शेख पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे शहर वाडकीअ खां ऐं मुमताज़ लाशारी जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा साईं प्रोग्राम जो वक़्तु हींअर पहुचण वारो आहे पुॼाणीअ ते। इनशाला ताला हयाती रही नेक्स्ट जुमे ते शो जे दौरान तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ज़रूरु ॿुधाईंदुसि। तव्हां दिलि जाए करे छॾियो ॻोठ मोहम्मद तैयब थेबो खां हबीबुल्ला थेबो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा हबीबुल्ला महिरबानी तव्हांजी, लख रुपए लख अहसान तव्हांजा ॻोठ। उमेद अली ज़रदारी खां गुलाम सरवर बागाई चवंदा सर अस्सलाम वालेकुम। त वालेकुम अस्सलाम। अदा गुलाम सरवर भाउ तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग मां प्ले कयो पर जेके ॿोल तव्हां लिखिया विया उहो सॉन्ग लाइब्रेरी में मौजूद न हुजण सबबि अताउल्ला ईसा खान खिलवीअ जो मां ॿियो हिकिड़ो ज़बरदस्त सॉन्ग प्ले कयो हुयो। उमेदु आहे त उहो बि अव्हांखे पसंदि आयो हूंदो जेको तव्हां डेडिकेट कयो हुयो भूरो खान लाखो खे ऐं आज़िज़ ज़मान लाविस्तड़ो खे। त महिरबानी प्यारा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। खानवाण खां वाहिद बख्श लाशारीअ जो मैसेज वाहिद बख्श ख़ासखेरीअ जो मैसेज आहे ऐं चवनि था बेस्ट प्रोग्राम आहे मुमताज़ लाशारी ॿुधायो त हाल दादा। मुमताज़ लाशारी जूं ॿ टे फरमाइशूं वधी वियूं आहिनि त कोशिशि कंदासीं त मुमताज़ लाशारी तव्हांखे असां ॿुधायूं। त महिरबानी मुंहिंजा प्यारा साईं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो त प्रोग्राम म्यूज़िक मस्तीअ जो बि वक़्तु पहुची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते ऐं हमेशह वांगुरु तव्हांखे असां चवंदा आहियूं त वञण खां पहिरियां कुझु चंद तव्हांखे ॻाल्हियूं चवंदा आहियूं। इहे चवंदा आहियूं त पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखंदा कयो पंहिंजनि दोस्तनि जो मिटनि माइटनि जो पाड़े वारनि जो ख़्यालु रखंदा कयो ऐं दुनिया आरज़ी आहे फ़ानी दुनिया आहे हिन दुनिया में का ख़बर न आहे केतिरा ॾींहं आहियूं ऐं केतिरा ॾींहं ज़िंदा आहियूं ऐं केतिरा पल असां वटि आहिनि। उन जे करे मोहबत वंडियो ऐं मोहबत में मज़ो आहे। मोहबत खां सवाइ कुल्फ़त में कुझु बि न आहे रहियो ऐं कुल्फ़त करण वारा माण्हू पाण सां गॾु क़बरुनि में बि कुल्फ़त खणी वेंदा आहिनि ऐं मोहबत ॾियण वारा माण्हू पाण सां गॾु मोहबत खणी वेंदा आहिनि पर दुनिया में बि पोइ ते पंहिंजे लाइ मोहबत छॾे वेंदा आहिनि। त उन मोहबत खे दायम ऐं क़ाइमु रखणो आहे ऐं तव्हांखे अञा वधीक पंहिंजे औलाद जे लाइ उन्हनि जी पढ़ाईअ जे लाइ उन्हनि जी तरक़ीअ जे लाइ पाण पतोड़णो पवंदो तॾहिं वञी दुनिया सां तव्हां विख विख में ॾेई करे हली सघंदा। त प्रोग्राम जो वक़्तु पुछी वियो पुॼाणीअ ते। इनशाला ताला हयाती रही त वरी ईंदड़ प्रोग्राम ई तव्हां सां गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ ॾींदा पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे इजाज़त। वेंदे वेंदे मुमताज़ लाशारी प्ले करे थो वञा ऐं मुमताज़ लाशारी खे उमेदु आहे तव्हां बि इंजॉय कंदा असां बि इंजॉय कंदासीं।

कराची में कुत्ते के डाड़ने सबब सांगड़ वासी लिंगर जिना अस्पताल में इलाज दौरान फौती हुआ है। डॉक्टर जो चवण है लिंगर के चार महीना अग कुत्ते डाड़े जख्मी किया हो, खेस वैक्सीन न लगराई गई हुई। हलंदड़ साल जिना अस्पताल में कुत्ते के डाड़ने सबब नव जना फौती चुका है। जैकमाबाद एसआईए पुलिस जीरो प्वाइंट भरसा पंजाब वींदड़ उणवी अफगानिन के गिरफ्तार कर वरतो। गिरफ्तार अफगानिन शहरी जीरो प्वाइंट भरसा सवारी के इंतजार में हुआ तो एक्साइज पुलिस के गिरफ्तार कर पुलिस मूजिब उणवी अफगानी शहरन के बायपास भरसा गिरफ्तार कर वो है जे पंजाब वही रहा हुआ। गिरफ्तार अफगान शहरन के होल्डिंग कैम्प के अमले हवाले कर वो है। मंजूराबाद वेझो पुरानी दुश्मनी तां नौजवान गोलियों हणी कतल। लाश अस्पताल मुंतकिल बासनो वट बनी में कम कंदड़ 40 वरन जो अलाउद्दीन कोसो मारजी वयो आहे। इतला ते खाणो पुलिस पहुंची मक्तूल जो लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो आहे। जरियुनि जो चवण आहे त 4 साल अॻु प्लाट जी मालिकियत मक्तूल अलाउद्दीन कोसो तां करीम कोसो कतल थियो हो। वाके जी पलांद में अलाउद्दीन कोसो खे संदसि भाइटनि कतल कयो आहे। सखर में 8 महीननि जे ॿार खे अगवा करण जी कोशिश शहरन ॿिनि औरतनि खे पकड़े वरितो। गोलीमार वारे इलाइक़े मां ॿिनि औरतनि ॿारड़े तलाह पुट काशिफ खोसो खे अगवा करण जी कोशिश कई। शहरन ॿिन्ही औरतनि खे पकड़े पुलिस हवाले करे छॾियो। पुलिस औरतनि खे तहवील में वठी वधीक कार्रवाई लाइ वुमेन थाणे ते मुंतकिल करे छॾियो। ऐं मलीर नेशनल हाईवे लिंक रोड ते ट्रॉलर जो कोच खे टकर वॼणा फोर्थ रेस्क्यू टीमनि पहुची लाश जिना अस्पताल मुंतकिल करे छॾिया। फोतियुनि जी सुञाणप न थी सघी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन ता असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन ता वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तेंदो आसान जवाब यो आ, ही बार भी असामट अल्लाह ताला जी एक वरी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असां जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उन्हें के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगाना लाजमी आए।
4: खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713900392।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
7: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
10: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
10: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
8: तो पोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
10: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
8: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
8: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 0331252578
8: जी हा 2315525786
10: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
8: सिंध जो आवाज़

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
4: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
6: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: अक्सर वालदेन जो इहो चवणु हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्ला लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती है। बच्चों को वैक्सीन लगाए क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिन जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमत उल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सेहतमंद करार ॾियण खां पोइ बानी पीटीआई खे सुबुह 5 वॻे ॿीहर डालिया जेल मुंतकिल कयो वियो। पिम्स में अलशिफा इस्पताल जा डॉक्टर्स बि मौजूदु हुआ। पीटीआई बानी जी भेण उज़मा ख़ान इलाज जे समूरनि मरहलनि दौरान मौजूदु हुई। पीटीआई कारकुननि जे करे जेका सूरतयाल रस्ते अलशिफा इस्पताल ॿाहिरां पैदा कई वई हुनखे नज़र में रखी बानी पीटीआई खे पिम्स इस्पताल आंदो वियो। पार्लियामेंट मामलनि वारनि वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी जो चवण आहे त बानी पीटीआई जा ज़रूरी तिबी मरहला मुकमिल थी विया। सिहत जे मामले ते सियासत न कई वञे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान चयो आहे त उमीद न हुई त बानी पीटीआई खे कंहिं ॿी इस्पताल मुंतकिल कयो वेंदो ऐं इलाज जा तफ़सील बि न ॿुधाया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भञकड़ी कई वई आहे। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम में को बि मुंझारो न हो। उन ते अमल न थियणु बदकिस्मती आहे। ॻाल्हियूं ईअं न थींदियूं ऐं न ई वरी जमहूरियत ईअं हलंदी आहे।

कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुल ठीक आहे। पीटीआई बानी सां संदसि भेण जी मुलाकात थी चुकी आहे। इहा ई ॿुधाए सघे थी त बानी सिहत कीअं आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़णु न घुर्जे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो क़ौमी असेंबलीअ में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ चयो त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन खां अलावा इलाज जारी आहे। डॉक्टर जी रिपोर्ट अवां बि ॾिसी वठो, असां बि ॾिसंदासीं। अॼु बि नवाज़ शरीफ जी प्लेट्स जी ॻाल्हि करे मज़ाक उॾायो वेंदो आहे। बानी पीटीआई बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूदु आहिनि। उन्हनि खे अहसास न हो त बीमारी हिकु हक़ीक़त आहे।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशा लाइ गॾु आहे। फितना ख़वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जो प्रॉक्सीज़ आहिनि जेके रियासत ऐं अवाम विच में विचोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जे गरियल अज़म ऐं रियासत जे मज़बूत ऐं फैसलाइती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मौजूदु चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख़्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत जे HQ में मुलाक़ात। बलोचिस्तान जे अमून इस्तकाम ऐं तरक़ी में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾेवत कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतनि ऐं मौक़नि जी का खोट न आहे। बलोचिस्तान जो अवाम ई बलोचिस्तान जी तकदीर बदिलाए सघे थो।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
6: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थो पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे त बूस्टर डोज़ लॻाए।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
9: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात जीए FM रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।
11: ہوا ہے خاتمہ ایمان پر تیرا نوری، جبھی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں، تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूरी जो सबबु न बणंदो।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बेहर छो प्यारियो मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए त इंदो आसान जवाब यो आ ही बार भी असां वटि अल्लाह ताला जी हिकु वॾी नेमत आहे। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डी जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: मिठा, हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: दुनिया करो।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मामलन वारे वजीर अतारण फजल चौधरी जो चवण आहे त पीटीआई जा ज़रूरी तिबी मरला मुकमिल थी विया आहिनि, सिहत जे मामले ते सियासत न कई वञे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान चयो आहे त उमीद न हुई त पीटीआई बानी खे कंहिं बि अस्पताल मुंतकिल कयो वेंदो ऐं इलाज जा तफ़सील बि न ॿुधाया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भञकड़ी कई वई आहे, जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम में को बि मुंझारो न आहे, उन ते अमल न थियणु बदकिस्मती आहे, ॻाल्हियूं ईअं नाहिनि थींदियूं ऐं न ई वरी जमहूरियत ईअं हलंदी आहे। कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई जी सिहत बिल्कुल ठीकु आहे। पीटीआई बानी सां संदसि भेण जी मुलाक़ात थी चुकी आहे, इहा ई ॿुधाए सघे थी त बानीअ जी सिहत कीअं आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़णु न घुर्जे, दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो क़ौमी असेंबली में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे, ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बे इलाज जारी आहे। डॉक्टर जी रिपोर्ट अवां बि ॾिसी वठो, असां बि ॾिसंदासीं। अॼु बि नवाज़ शरीफ जे प्लेटलेट्स जी ॻाल्हि करे मज़ाक उॾायो वेंदो आहे, बानी पीटीआई बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूदु आहिनि। हुननि खे अहसास न हो त बीमारी हिकु हक़ीक़त आहे। पीटीआई बानी जे इलाज बाबति सुप्रीम कोर्ट जे अहम फैसले खे रद्द कयो वियो, ही कार्रवाई अफ़सोसनाक ऐं मज़म्मत जोॻी आहे। आख़िर ही एतिरी हठ धर्मी छो करे रहिया आहिनि? डॉक्टर उज़्मा ख़ान, डॉक्टर फैसल सुल्तान ऐं ख़बर केपीके जे वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी जी केपीके हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर उज़्मा ख़ान चयो त गुज़िरियल राति पीटीआई बानी खे शिफ़ा अस्पताल आणण पिणु जांदो वियो, जिते डॉक्टर आरिफ ऐं ॿियनि डॉक्टरनि मुआइनो कयो, उते कंहिं खे बि बानीअ जो मेडिकल हिस्ट्री बाबति का बि ॼाण न हुई। सोहेल आफरीदी चयो त ही इख़लाक़ी अहिड़ी सतह ते पहुची चुका आहिनि जो अदालत खे बि नथा मञनि, असां ज़रूर हिन मामले ते तोहीन अदालत जी कार्रवाई लाइ वेंदासीं। पाकिस्तान ऐं गूगल विच में क़ौमी डिजिटल तब्दीलीअ लाइ मुफ़ाहमती यादाश्त ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में गूगल टीम जे मान में आजियाणो बि ॾिनो। हलंदड़ साल पाकिस्तान में 1.5 लख गूगल करियर सर्टिफिकेशन जो हदफ़ मुक़रर। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जे क़याम लाइ बि पाकिस्तान ऐं गूगल विच में सहकार ते इतफ़ाक़। मार्शल सैद आसिम मुनीर चयो आहे त बलूचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितना अल-ख़वारिज ऐं फितना अल-हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जो प्रॉक्सीज़ आहिनि, जेके रियासत ऐं अवाम विच में विछोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जे गरियल अज़म ऐं रियासत जी मज़बूत ऐं फैसलाइती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मौजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर सां बलूचिस्तान जे अहम शख़्सियतनि ऐं सियासी क़यादत जे HQ में मुलाक़ात कई। बलूचिस्तान जे अमन इस्तक़ाम ऐं तरक़ी में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठ कई। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर चयो आहे त बलूचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतनि ऐं मौक़नि जी का खोट नाहे, बलूचिस्तान जो अवाम ई बलूचिस्तान जी तकदीर बदिलाए सघे थो। कटे ज़िले में 40 रुपयनि जी 4,435 एकड़ सरकारी ज़मीन जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट जो स्कैंडल ज़ाहिर। नेब जी जांच बाद लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते मीरपुर साकरो जे देहगारो में 435 एकड़ ज़मीन जी गैर क़ानूनी अलाटमेंट रद्द करे छॾी। लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते मूजिबि सुप्रीम कोर्ट में 2012 वारे हुकुम तहत सरकारी ज़मीन जे क़ानूनी अलाटमेंट ते पाबंदी आहे। पाबंदी बावजूद जालसाज़ी ज़रिए सॉलिड वर्क्स नाले कंपनी खे ज़मीन ॾिनी वई हुई। ज़मीन खे 15 ॾींहं अंदरि तहवील में वठण जी हिदायत कई वई। नेब मूजिबि ज़मीन जी कुल मालियत 2.5 अरब रुपयनि खां वधीक आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
6: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
9: 0331252578 6
6: جی ہاں 2 3615525786
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों त असा बार बार पंजे बारन के पोलियो का कतरा छो प्यारियों जो असा बार पेरी पोलियो का कतरा पी चुको है। मुझो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लैल है। मां बारन जे शोबे में खिदमत अंजाम दिया तो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीण से बार जी इम्यूनिटी जका बेहतर थिए थी। हाने जका कैंपेन अचे थी जैमें असा जो पोलियो जो डींदासी उन में का भी सुई इस्तेमाल न थी बगैर कें दर्द के वैक्सीन जका पांजे बार के करायो तो जी असो पाकिस्तान इन पोलियो जड़े मुझी मर्ज में जो महफूज रहे।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदे ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मेरा नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
7: खुशख़बरी, खुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
7: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे ओवरऑल पूरो सूबो पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाराए।
8: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
9: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।
1: वफाओं का कोई
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पीटीआई बानी जो तिबी मुआइनो शिफा इंटरनेशनल नपर पिम्स अस्पताल में कयो वियो। फाकी वजीर अतातारण जो इंकशाफ। अतातारण जो चवण आहे त डॉक्टर पारां तिबी तौर सेहतमंद करार ॾियण खां पोइ बानी पीटीआई खे सुबुह 5 वगे ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वियो। पिम्स में अल शिफा अस्पताल जा डॉक्टर्स बि मौजूद हुआ। पीटीआई बानी जी भेण उज़्मा ख़ान इलाज जे समूरनि मरहलनि दौरान मौजूद हुई। पीटीआई कारकुननि जे करे जेका सूरतयाल रस्ते ऐं अल शिफा अस्पताल ॿाहिरां पैदा कई वई, उनखे नज़र में रखी बानी पीटीआई खे पिम्स अस्पताल आंदो वियो। पार्लियामेंटी मामलनि वारे वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी चयो आहे त पीटीआई बानी जा ज़रूरी तिबी मरहला मुकमिल थी विया। सिहत जे मामले ते सियासत न कई वञे। वफ़ाक़ी हुकूमत पीटीआई बानी खे अस्पताल मुंतकिल करण वारे केस में ॿीहर नज़रसानीअ जी दरख़्वास्त दाख़िल करे छॾी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तरफ़ां रजिस्ट्रार आफ़िस जा एतिराज़ ख़तम करे नज़रसानीअ जी दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कराई वई। उन खां अॻु अदालत नज़रसानी दरख़्वास्त एतिराज़ लॻाए वापसि कई वई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान चयो आहे त उमीद न हुई त बानी पीटीआई खे कंहिं बि अस्पताल मुंतकिल कयो वेंदो ऐं इलाज जा तफ़सील बि न ॿुधाया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भञकड़ी कई वई आहे। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो आहे त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम में को बि मुंझारो न हो, उन ते अमल न थियण बदकिस्मती आहे। ॻाल्हियूं ईअं न थींदियूं ऐं न ई वरी जमहूरियत ईअं हलंदी आहे।

कसम खणी चवां थो त बानी पीटीआई सिहत बिल्कुल ठीक आहे। पीटीआई बानी सां संदस भेण जी मुलाकात थी चुकी आहे। इहा ई ॿुधाए सघे थी त बानीअ जी सिहत कीअं आहे। सिहत जे मामले खे सिहत जे वर चाढ़ण न घुर्जे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो क़ौमी असेंबलीअ में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ चयो आहे त पीटीआई बानी जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बि इलाज जारी आहे। डॉक्टर जी रिपोर्ट अवां बि ॾिसी वठो, असां बि ॾिसंदासीं। अॼु बि नवाज़ शरीफ जे प्लेटलेट्स जी ॻाल्हि करे मज़ाक उॾायो वेंदो आहे। बानी पीटीआई बि मज़ाक उॾायो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूद आहिनि। हुननि खे अहसास न हो त बीमारी हिकु हक़ीक़त आहे। पीटीआई बानी जे इलाज बाबति सुप्रीम कोर्ट जे अहम फैसले खे रद्द कयो वियो। हीउ कार्रवाई अफ़सोसनाक मज़म्मत जोॻी आहे। आख़िर हीउ एतिरी हठ धर्मी छो करे रहिया आहिनि? डॉक्टर उज़मा ख़ान, डॉक्टर फैसल सुल्तान ऐं ख़ैबर केपीके जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी जी केपीके हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर उज़मा ख़ान चयो आहे त गुज़िरियल राति पीटीआई बानी खे शिफ़ा अस्पताल आणण पिम्स आंदो वियो हो, जिते डॉक्टर आरिफ ऐं ॿियनि डॉक्टरनि मुआइनो कयो। उते कंहिंखे बि बानीअ जी मेडिकल हिस्ट्री बाबति का ॼाण न हुई। सुहेल आफ़रीदी चयो आहे त उहे इख़लाक़ी पुश्ती जी अहिड़ी सतह ते पहुची चुका आहिनि जो अदालत खे बि नथा मञनि। असां हिन मामले ते तोहीन अदालत जी कार्रवाई लाइ वेंदासीं। पाकिस्तान ऐं गूगल विच में क़ौमी डिजिटल तब्दीलीअ लाइ मुफ़ाहिमती यादाश्त ते सहियूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ इस्लामाबाद में गूगल टीम जे मान में आजियाणो बि ॾिनो। हलंदड़ साल पाकिस्तान में 1.5 लख गूगल कैरियर सर्टिफिकेट जो हदफ़ मुक़ररु। AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जे क़याम लाइ बि पाकिस्तान ऐं गूगल विच में सहकार ते इतफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलूचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितनाल ख़वारिज ऐं फितनाल हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जो प्रॉक्सीज़ आहिनि, जेके रियासत ऐं अवाम विच में विछोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं सबूरियूं साज़िशूं क़ौम जे गॾियल अज़म ऐं रियासत जे मज़बूत ऐं फैसलाइती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मौजूदु चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत जे HQ में मुलाक़ात। बलोचिस्तान जे अमून इस्तक़ाम ऐं तरक़ी में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि कई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतनि ऐं मौक़नि जी का खोट नाहे। बलोचिस्तान जो अवाम ई बलोचिस्तान जी तकदीर बदिलाए सघे थो। कठे ज़िले में अरबे रुपयनि जी 435 एकड़ सरकारी ज़मीन जी गैरक़ानूनी अलाटमेंट जो स्कैंडल ज़ाहिर। नेब जे जांच बाद लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते मीरपुर साकरो जे देहगारो में 435 एकड़ ज़मीन जी गैरक़ानूनी अलाटमेंट रद्द करे छॾी। लैंड यूटिलाइज़ेशन खाते मूजिब सुप्रीम कोर्ट जे 2012 वारे हुकुम तहत सरकारी ज़मीन जी ख़ानगी अलाटमेंट ते पाबंदी आहे। पाबंदी बावजूदि जालसाज़ी ज़रिए सॉलिड वर्क नाले कंपनीअ खे ज़मीन ॾिनी वई हुई। ज़मीन खे 15 ॾींहं अंदरि तहवील में वठण जी हिदायत कई वई। नेब मौजूदु ज़मीन जी कुल मालियत 2.5 अरब रुपयनि खां वधीक आहे। हैदराबाद जे शीरी ॻोठ में ज़मीन अंदरि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ओचितो धमाका थियण सबब ख़ौफ़ ऐं रास पखिड़िजी वियो आहे। धमाकनि सबब भाॼी विकिरो कंदड़ हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। केतिरनि ई रक्षाउनि जा शीशा टुटी पिया। ज़रियनि मूजिबि धमाकनि जो सबब गैस लाइन फाटण ॿुधायो पियो वञे। वाक़े जी वधीक जांच जारी आहे। कराची जे 6 ज़िलनि में पोलियो वायरस जी मौजूदगी जी तस्दीक। कराची सेंट्रल ईस्ट, कियामाड़ी, मलेस साउथ ऐं वेस्ट जे माहौलियाती नमूननि में पोलियो वायरस जी तस्दीक। नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो मुताबिक जून महीने दौरान कराची जे 6 ज़िलनि जे माहौलियाती नमूननि में वायरस जो पतो न पियो हो। जुलाई में कश्मोर ज़िले जे माहौलियाती नमूननि में पोलियो वायरस जी तस्दीक थी हुई। जुलाई महीने में रावलपिंडी ऐं बलोचिस्तान में चिमन, डेरा बुगटी, कोयटिया समेत KPK जे शहरनि बनून ऐं पिशावर जे माहौलियाती नमूननि में बि पोलियो वायरस जी तस्दीक थी हुई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
2: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻारायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
7: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ।
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252578 6।
5: जी हाँ, 2315525786।
9: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM
1: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ये सवाल कंदा आयन त असा जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ ये बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक बड़ी नियामत आयन। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ये पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफत जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आयन उनन के ये बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

समझ लिया। सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पीटीआई बानी के अलशिफा अस्पताल बदरा पिम्स में तिबी मुआइनो कराने बाद जेल मुंतकिल करने अपोजिशन जो सख्त रद्दअमल। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की सदारत हेट अपोजिशन अगवाणन की अहम गडजाणी। अगवाणन गडियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त काल जेको कुछ थियो उनको अंदाजो न हो। अदालत मेडिकल बोर्ड जोड़ने जो हुकुम दिनो हो उनते अमल न थियो आहे। टिन सालन खां अदालतुन जा चक्कर लगाए रहा आयूं पर इंसाफ न पियो मिले। हाँ इंसाफ लाए अवामी अदालत में भी वेंदासीं।

पीटीआई बानीअ जो तिबी मुआइनो शिफा इंटरनेशनल न पर पिम्स अस्पताल में कयो वियो। वफाकी वज़ीर अता तारड़ जो एतराफ़। अदा तारड़ जो चवण हो त डॉक्टर पारां तिबी तौर सिहतमंद करार ॾियण खां पोइ पीटीआई बानीअ खे सुबुह 5 वॻे ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वियो। पिम्स में अलशिफा अस्पताल जा डॉक्टर्स बि मौजूद हुआ। पीटीआई बानीअ जी भेण उज़मा ख़ान इलाज जी समूरनि मरहलनि दौरान मौजूद हुई। पीटीआई कारकुननि जे करे जेका सूरतहाल रस्ते में ऐं अलशिफा अस्पताल ॿाहिरां पैदा कई हुई उनखे नज़र में रखी बानी पीटीआई खे पिम्स अस्पताल आंदो वियो। पार्लियामानी मामलनि वारे वज़ीर तारिक फज़ल चौधरी जो चवण हो त बानी पीटीआई जा ज़रूरी तिबी मरहला मुकमल थी विया आहिनि, सिहत जे मामले ते सियासत न कई वञे। वफ़ाक़ी हुकूमत पीटीआई बानीअ खे अस्पताल मुंतकिल करण वारे केस में ॿीहर नज़रसाने जी दरख़्वास्त दाख़िल करे छॾी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तरफ़ां रजिस्ट्रार ऑफिस जा एतिराज़ ख़तम करे नज़रसानीअ जी मुतफ़रक दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कराई वई। इन खां अॻु अदालत नज़रसानी दरख़्वास्त एतिराज़ लॻाए वापसि कई हुई। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर खान चयो आहे त उमेद न हुई त बानी पीटीआई खे कंहिं ॿी अस्पताल मुंतकिल कयो वेंदो ऐं इलाज जा तफ़सील बि न ॿुधाया वेंदा। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम जी भञकड़ी कई वई आहे। जेकॾहिं अदालती हुकुम ते अमल करणु मुश्किल आहे त पोइ जमहूरियत कीअं हलंदी। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे बैरिस्टर गोहर चयो त सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम में को बि मूंझारो न हो, उन ते अमल न थियणु बदकिस्मती आहे। ॻाल्हियूं इएं न आहिनि थींदियूं ऐं न ई वरी जमहूरियत इएं हलंदी आहे।

कसम खणी चवां थो त पीटीआई बानी जी सेहत बिल्कुल ठीक आहे। पीटीआई बानी सां संदसि भेण जी मुलाकात थी चुकी, उहा ई ॿुधाए सघे थी त बानीअ जी सिहत कीअं आहे। सिहत जे मामले खे सियासत जे वर चाढ़ण न घुर्जे। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ जो क़ौमी असेंबली में ख़िताब। ख्वाजा आसिफ़ चयो त पीटीआई बानीअ जी अख बहितर थी रही आहे। ब्लड प्रेशर जी शिकायत आहे, उन लाइ बि इलाज जारी आहे। डॉक्टर्स जी रिपोर्ट अवां बि ॾिसी वठो, असां बि ॾिसंदासीं। अॼु बि नवाज़ शरीफ़ जी प्लेटलेट्स जी ॻाल्हि करे मज़ाक उॾायो वेंदो आहे। पीटीआई बानी बि मज़ाक उॾायो हो, जंहिं जूं केतिरियूं ई वीडियोज़ मौजूदु आहिनि। हुननि खे अहसास न हो त बीमारी हिकु हक़ीक़त आहे।

सुठो माहौल ठयो हो, खबर न आहे केर उनखे खराब करे छॾे थो। पीटीआई बानी खे अस्पताल आणण ते समूरो मुल्क खुश हो, हाणे मुल्क परेशान आहे त ही छा पियो थिए। क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ी चयो त पीटीआई बानीअ जी भेनरनि खे शिफ़ा अस्पताल में बंदि कयो वियो, ख़बर न आहे ही सभु केरु पियो करे।

0: पाकिस्तान ऐं गूगल विच में क़ौमी डिजिटल तब्दीलीअ लाइ मफ़ामती याददाश्त नामे ते सयूं। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में गूगल टीम जे मान में आजियाणो बि ॾिनो। हलंदड़ साल पाकिस्तान में 1.5 लख गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स जो हदफ़ मुक़रर। AIA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जे क़याम लाइ बि पाकिस्तान ऐं गूगल विच में सहकार ते इतफ़ाक़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितना ख़्वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जूं प्रॉक्सीज़ आहिनि, जेके रियासत ऐं अवाम विच में विछेटूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जी गॾियल अज़म ऐं रियासत जी मज़बूत ऐं फैसलाती रद अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख़्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत GHQ में मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान बलोचिस्तान जे अमन इस्तेहकाम ऐं तरक़ीअ में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। फील्ड मार्शल चयो त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतुनि ऐं मौक़नि जी का खोट न आहे। बलोचिस्तान जो अवामी बलोचिस्तान जी तक़दीर बदिलाए सघे थो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन जो यो चवण हुंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
4: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842।
8: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
9: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
10: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
10: 03125252786
6: जी हा 3135525786
10: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़

हम अपने तमाम दोस्तों को कहना चाहते हैं अस्सलाम वालेकुम अगेन। कैसे हाल चाल है आप तमाम दोस्तों की, उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं पर भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और जनाब सबको साथ लेकर चल रहे होंगे। बिल्कुल जनाब 39 सेंटीग्रेड सखर का इस वक्त टेम्परेचर हुआ चाहता है और टेम्परेचर चाहे कैसा ही क्यों ना हो, अरे गर्म हो, सर्द हो, नॉर्मल हो या कैसा भी क्यों ना हो, हम सबको साथ लेकर चलते हैं और हम सबको यही ताकीद करते हैं कि आप भी सबको साथ लेकर चलिए। अरे जनाब क्योंकि जब हम लोग चलते हैं तो फिर हम बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम ठहर जाते हैं तो फिर मसले मसाइल हो जाते हैं। अरे जनाब हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, हम लोग तरक्की नहीं कर पाते, इसलिए कहता हूं कि जब आप लोग तरक्की करने का सोच ही चुके हैं तो फिर आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए और भागते रहिए तब तक जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। बिल्कुल जनाब, और इस वक्त जब हम लोग चल रहे हैं हम भी इस वक्त अपने प्रोग्राम का स्टार्ट ले चुके हैं, आप लोग भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो जनाब थोड़ा सा अपने अंदर चेंजिंग लाइए। अगर आप दर्द दिल रखते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दर्द दिल नहीं रखते तो जनाब बुरी बात है। बिल्कुल जनाब अपने अंदर दर्द दिल रखें, क्योंकि जनाब दर्द दिल जब हम में होगा तो हम हर किसी की तकलीफ का एहसास कर पाएंगे, और जब एहसास हो जाता है तो यकीन जानिए कि हम सबसे कीमती इंसान बन जाते हैं। वो कहते नहीं कि जिस इंसान में एहसास होता है वो सबसे कीमती होता है, अरे जनाब बिल्कुल, इर्द गिर्द देखें तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई किसी का एहसास नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको बहुत ज्यादा एहसास होता है। अरे जनाब बहुत से लोग एहसास वाले होते हैं, बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं कि हम एहसास इसीलिए नहीं करते क्योंकि हम अकलमंद हैं, हमने बहुत दफा ऐसा किया है, हमको बहुत दफा सिला मिला है बुरा, तो जनाब ऐसा नहीं होता, सिला देने वाला हमेशा अल्लाह ताला होते हैं और अल्लाह ताला आपको आपकी नेकियों का, आपके नेक कामों का अजर जरूर देते हैं। तो इसीलिए अकलमंद होने से ज्यादा एहसास वाला बंदा हो तो मेरे नजदीक वो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि जमीन तो देखे ना अकलमंदों से भरी पड़ी है मगर दर्दमंदों से खाली है। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मखलूक से मोहब्बत खालिक तक ले जाती है, तो इसी दिन दोस्तों रूए जमीन पर अमन कायम हो जाएगा, अमन, और हर बंदा जनाब खुशहाल हो जाएगा और हर बंदा कभी भी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि हमारे साथ दर्दमंद लोग हैं, हमारा दर्द बांट लेंगे और जनाब हमारे दर्दों का मदावा कर लेंगे। आपका अपना अशफाक नियाज़ी आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में, ऐसी बहुत सारी बातें और दूसरी बहुत सारी बातें अपडेट देनी है आपको, आपके साथ गपशप करनी है, आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है, आपके मैसेजेस शामिल शो करना है और इसके साथ साथ जनाब आपकी कॉल्स भी लेनी है। तो देर किस बात की है, हम कहां जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे आपको जनाब छोड़ के, हम सिर्फ आपके साथ साथ मौजूद हैं और आपके शो को आगे लेकर बढ़ने की जसारत कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, आपकी इजाजत के साथ। तो हम जनाब शो का पहला गाना चलाते हैं, उसके बाद आपकी कॉल शोज भी लेंगे। तो इसरार का गाना मेरा बहुत फेवरेट गाना है, मैं प्ले कर चुका हूं आपके लिए, हमारा और आपका साथ रहेगा 5 से 7 बजे तक, मेरा बहुत फेवरेट गाना है, इस गाने को सुनिएगा मजे से और 5 से 7 तक मेरा और आपका साथ रहेगा। आसमान पे कोई बादल नहीं है, बहुत क्लियर माहौल है, दुआ कीजिए कि हल्के हल्के बादल आ जाए, ठंडी ठंडी बारिश हो जाए और मस्त हुआ सुनकर हम लोग इस बारिश को भी एंजॉय करें, अगर हो जाए तो, अगर नहीं हुआ तो ऐसी साफ मौसम में एंजॉय करें इस गाने को और एंजॉय कीजिए।

0: क्या बात है जना, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समाधान की नजर किया। असरार की बहुत बेहतरीन सी प्यारी सी वॉइस में 5:20 टाइम इज राइट नाउ। शाम के 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। ड्राइव कर रहे हैं तो स्लोली ड्राइव। जी जना बिल्कुल, क्योंकि आपने मौसम का मजा भी लेना है। मौसम भले साफ हो लेकिन मौसम का, नजारों का, लोगों का और मतलब ये जो सब चीजें रास्ते में आती है ना, बहुत कीमती होती है, स्पीशियस होती है और इन सबको बहुत ज्यादा मजे से आप लोग इंजॉय करते जाएंगे तो आपका सफर बहुत अच्छे तरीके से कट जाएगा। वेल, हमारा फोन नंबर आप जरूर नोट डाउन करें जो कि हम आपको बताने लगे हैं, 03000113488, जिस पे कॉल करके आप हमारे साथ गपशप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहां हैं, क्यों हैं और जनाब क्या कर रहे हैं, हमारे साथ शो को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेते हैं शो की पहली कॉल, देखते हैं लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। मुझे प्यारा मीठा जानी के रहे असा सबनी सा गडो गड एग्जैक्टली तव्हांजी वॉइस टोन मूंखे ख़बर पइजी वेंदी आहे त कुर्बान अली ख़ासि खे लिए आहे। हाय इश्क हुआ बर्बाद हुआ ॿियो ठीक ठाक मज़े में सफ़ा वाह वाह वाह वाह वाह वाह। जाम शोर जी हवाऊं इलाही ॿुधियूं आहिनि त जाम शोर जी लाइ हवाऊं इलाही थधी हूंदियूं आहिनि। अच्छा कुर्बान ख़ासि खेली साहब, तव्हांखे मुंहिंजी आवाज़ प्रॉपर

0: तव्हां धुको हयो आहे धुको?
1: बिल्कुलु बिल्कुलु।
0: चलो ठीकु आहे, ॾिसूं था तव्हांजो धुको हलियो या कोन हलियो, पर तव्हां इहो ॿुधायो तव्हांजे ॻोठ में मौसम खे कीअं आहे? अच्छा, कुर्बान भाउ गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था? कहिड़ी कहिड़ो गानो? राति जा तारा। इहो वरी कंहिंजो
1: आहे?
0: अहमद मुगल जो आहे। ओके ओके ओके, ज़रूरु ॿुधाईंदा। कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? जी ओके, ॿियो? वालेकुम अस्सलाम कुर्बान भाई। जी जनाब, हमारे साथ कुर्बान खास के लिए भाई थे और जनाब इनका कहना है कि मुझे गाना सुनवाए जाए, रात जा तारा छो था तू न ईंदे, चवन था तू न ईंदे। ओके जनाब, रात जा तारा अगर चवन था तो रात जे तारनि जी ॻाल्हि मने छॾियो, छो त रात जा तारा कॾहिं बि कूड़ न आहिनि चवनि था। अहिड़ी बि असां तव्हां सभिनी दोस्तनि सां गॾु मौजूद आहियूं 5 खां 7 बजे ताईं, ऐं तव्हां असांखे कॉल करे सघो था। असां तव्हांखे पंहिंजो नंबर ॿुधायो आहे, ऐं हींअर वठूं था शो जी हिकिड़ी बि कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, लॻे थो त मुंहिंजो कॉलर भाउ अची त चुको आहे पर ॻाल्हाए छो नथो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कॉलर भाउ। हेलो हेलो, चलें जनाब कोई बात नहीं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, और आप जहां कहीं पर भी हैं हम आपका वेट कर रहे हैं, आप हमसे बात करें, गपशप करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रदा सबनी सां गदो गद गुलाम अब्बास भाई, तुम्हारी आवाज सफा डिस्टर्ब थी गई है, अलाए डबल डबल थी अचे, अजीब अजीब थी अचे। हाँ, किथां पिया कॉल कयो, किथां पिया कॉल कयो अदा? अभी जाणो खां। ओके, गुलाम अब्बास भाई छा कंदा आहियो? माशाल्लाह, प्राइवेट जॉब तव्हांजी कीअं थी हले? सफ़ा ज़बरदस्त। अच्छा गुलाम अब्बास भाई, इहो ॿुधायो त जेको शइ भॼी वेंदी, कोई अहिड़ी शइ आहे जेको भॼी वेंदी आहे पर आवाज़ न ईंदो, उहा छा शइ आहे? धुको। अच्छा गुलाम हुसैन भाउ, मां अहमद मुगल जो गानो थो हलायां, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो? जी जी, वाह वाह वाह, पकोड़ा बि खाओ था, चांहि बि पियो था। अकेला अकेला पेट में सूर पवंदव। तव्हां मुंहिंजी साइड सखल जी साइड करे मुंहुं करे हिकु कोप चांहि जो बि पियो ऐं पकोड़ा बि खाओ। हा त जीअं तव्हांजे पेट जे सूर खां बचजी वञो। थैंक यू गुलाम अब्बास भाउ, थैंक यू सो मच, इंजॉय कयो दोस्तनि सां गॾु। जी जनाब, हम चाहते हैं कि आप भी इंजॉय करें और हंसते मुस्कुराते रहें। अब टाइम क्या हुआ चाहता है जनाब, 26 हुआ चाहते हैं, तो हम चलाते हैं आपके लिए जबरदस्त सा गाना एक, और आप हमें कॉल, चलिए जनाब एक और कॉल ले लेते हैं, फिर उसके बाद गाना चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रात थे थी तो सूर जागन था। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, केरे सा सबनी सा गड़ो? ज़ुहैब साहब, किथां कॉल किया था? लाड़काणे वारा खेर सां अची विया आहिनि, खेर सां हो जमालो ॿिया ज़ोए भाउ, खेर ज़ोए भाउ, कहिड़ा हाल चाल अथव? मज़े में, कम छा कंदा आहियो? हा माशाल्लाह माशाल्लाह, कम छा कंदा आहियो ज़ोए भाउ?
1: कम कार मां
0: छा थी विया आहियो?
1: नाबीन
0: हो, कोई ॻाल्हि नाहे, कोई ॻाल्हि नाहे, अलाह ताला तव्हांखे बि तमामु घणी क्वालिटी ॾिनी हूंदियूं। जी जी जी, कोई मसलो न आहे। अच्छा, इहो ॿुधायो तव्हांखे अॼु जेको असां अहमद मुगल ॿुधायूं था, कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
1: अहमद मुगल मां पंहिंजे भाटे
0: सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ बाबे जे नाले। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ज़ोए भाई आपकी जिंदाबाद।
1: अल्लाह तव्हांखे ख़ुशि रखंदो, पूरी टीम खे ख़ुशि रखंदो।
0: थैंक यू ज़ोए, भला तव्हांखे वालेकुम असलाम। ज़ोए भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, असांखे ज़रूर ॿुधंदा रहो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ है बहुत प्यारे से ज़ुहैब भाई फ्रॉम लाड़काना, और लाड़काना वाले तमाम दोस्तों को हम प्ले करके सुनाते हैं जनाब अहमद मुगल का, रात जा तारा चवन था तू नहीं दे। तो बिल्कुल जनाब, मां त ईंदुमि, पर जंहिंजी ॻाल्हि थी इन गाने में उहा अलाए अचे या कोन अचे।

0: boy wanna.
1: रिश्तों भरोसे जो
2: अगर इट्स 5:30 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
1: अल हबीब रेमिट बैंक अल हबीब रिश्तों भरोसे जो
3: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्ष अपनाए आर्ष ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो आर्ष ब्यूटी क्रीम
4: मोरू
5: नौशहरो
4: मीरपुर खास
5: लाड़काना
4: सखर
5: गूंज रही है हर जगह पर
4: सिंध की आवाज
5: जीए FM 88 नेटवर्क
6: तो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठहण चाहो था जिते हो जे तहफुज जदीद सहूलतू मंजूर थियल सिक्योरिटी
7: तपोई भली कार हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर में
6: सखर शिकारपुर रोड ते
7: डॉक्टर जियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल सामने
6: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारा मंजूर थियल
7: एक शानदार आई काबिले एतमाद रिहायशी मनसूबो
6: हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
7: रिहायशी प्लॉट 80, 120 150 गज जा
6: कारोबारी मौके लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज 600 गज
7: इतने तमाम के मिलन थी जदीद सहूलतू
6: साफ मिठो पानी
7: बिजली गैस
6: 24 कलाक सिक्योरिटी
7: मस्जिद पार्क स्कूल बाउंड्री वॉल आई सबका वही गाल ही मंसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जी वेजो आहे
6: जेको रिहायश आई सीड़पकारी बिन्हीं लाइ बेहतरीन मौके बनाए थो
7: अजी पेंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो
6: फौरी कब्जो आई फौरी रजिस्ट्री
7: कॉन्टेक्ट
6: 03009317252
7: एंड 03132757860 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
6: तमाचे महफूज मुस्तकबिल ऐं बेहतरीन इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन इंतखाब
8: यार मछा क्या किथे वन्या घर में वेठो आहियां पर ठीक ही नहीं शायद मुझे जिंदगी लायक दवाई नहीं थई
6: छो भला छा थियो तोखे साफ साफ बुधा मसलो छाए
8: यार एक मसलो हुजे त बुधाया मुंजी ते मसलन जी कतार लगल आहे
9: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
10: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों तो मैं नाम डॉक्टर आरिफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाजाहिर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप फिर आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे
11: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
12: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
11: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
12: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
11: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
12: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
13: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली खुशखबरी
0: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
11: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
14: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
15: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
14: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
15: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
14: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
15: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
14: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
15: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
16: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
17: बिल्कुल यह सही गाल है पर जेका बब हजारन वारा नु वा तमरी विधान
18: उन्हनि जो ला
17: छो त असां वटि इहो कॉन्सेप्ट आहे त अगरि असां 5,000 खां वधीक कमाईंदड़ आहियूं या 1,00,000 खां वधीक कमाईंदड़ आहियूं त असां फौरी तौर ते घर बि न ठाराईंदासीं गाॾी बि न वठंदासीं ॿारनि खे माना कोई तालीम बि न ॾियारींदासीं असां चवंदा आहियूं त बसि ॿी शादी कयूं मिंट में
19: अगरि घर हुजे अगरि घर हुजे त हुनजी घरवारी बि हुजे न त घर कहिड़े कम जो हू पहिरियां धणदा धणींदासि कनि पोइ धण जी कशिश था कनि
17: सही ॻाल्हि आहे माना तव्हां घर खां ॿाहिरि आहियो वक़्तु असां घर मां छो त न तव्हां
19: असांखे अलहमदिल्ला घर आहे
17: अच्छा कहिड़े कम जो
19: घणी न आहे
17: कहिड़े कम जो
19: घणी न आहे
17: ॿाहिरि निकिरी वञो जेसी ताईं धणी न अचे
19: बिल्कुलु तव्हांजे चवण जेको आहे न बिल्कुलु जाइज़ आहे करण बि ईअं ई खपे
17: सही सही सही अच्छा इरफानी ॿुधायो त तव्हांखे
19: कोई फ़र्क़ न पवंदो
17: हा एक्ज़ेक्टली इरफानी ॿुधायो गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था
19: मूंखां त ॻाल्हि पुछ वई न
17: कहिड़ी
19: ऐं आम जीअं माण्हू पर्सनल नंबर ते माण्हुनि खे मिसकाल ॾिना न अॼु मां तव्हांखे स्टूडियो जे नंबर ते ईअं मिसकाल ॾिनी आहे तव्हांखे कीअं लॻो
17: मां त ॾिठो ई कोन अलाह जी कसम मां त जीअं बसि कॉल मुंहिंजी नज़र हेॾे हूंदी आहे फोन पोइ ते पवंदो आहे बसि मां न बटन दॿाईंदो आहियां कॉल अटेंड करण वारो बसि
19: माशाला तव्हां ते जेका हीअ मुंहिंजी कॉल लॻी न
17: जी जी
19: इन खां पहिरियां कॉल लॻी मूंखां हथ लॻी वियो पर अलहमदिल्ला बिज़ी न ॿुधाई मुंहिंजी कॉल ॿीहर लॻी
17: ज़बरदस्त ज़बरदस्त हाउ हाउ मच लकी यू आर ऐं ॿुधायो त सही त जेको आहे हाणे गानो कहिड़ो ॿुधणु चाहियो था
19: अॼु हिकिड़ो सॉन्ग मूं ॿुधो हुयो शायदि कंहिं स्टेशन ते उहो मां सॉन्ग ॿुधाइण थो चाहियां मस्ती जो सॉन्ग अथव ऐं इर्शाद जी शायरी अथव
17: अच्छा ॿुधायो ज़रूरु
19: डायरेक्ट दिलि में अची वे
17: ॿुधायो
19: डायरेक्ट दिलि में अची वे इहो सॉन्ग
17: इहो गानो आहे
19: जी हा वियासी सॉन्ग
17: डायरेक्ट दिलि में अची वे
19: जी डायरेक्ट दिलि में वे
17: दिलि में वे
19: जी
17: माना इनडायरेक्ट न डायरेक्ट दिलि में वियो ओके अची वियो डायरेक्ट दिलि में अची वियो
19: घर थो मिले न
17: एक्ज़ेक्टली एक्ज़ेक्टली
19: भाई मुंहिंजी कॉल जे दरमियान सखर बंदि थी वियो आहे ख़बर न आहे त छा फॉल्ट अची वियो आहे
17: अलाहदा छा फॉल्ट अची वियो हूंदो को न को यकीनी तौर ते असां ट्राए कंदा आहियूं त हले पर हाणे इनशाला हलंदो तव्हां दिलि जाए कयो
19: इंशाल्लाह मानू चवंदा हूंदा इरफान आयो इसाक खे बि गुम करे वियो
17: हा मेरा केॾे सदोर वातो आहे न इरफान
19: हा बिल्कुल हिन खां हू सोचींदा हूंदा असांजी ॻाल्हि लॻी या पोइ रेडियो त हले
17: बिल्कुलु डेडिकेशन ॿुधायो इरफान
19: डेडिकेशन इहो मुंहिंजो सॉन्ग कोशिश कजो मिली वञे कनेक्ट थियो न त पोइ ई हलाइजो सॉन्ग फेसबुक मूं वटि न आहे ऐं मां सोशल मीडिया खां परे आहियां अञा
17: सही सही
19: ऐं गरीबाणी कीपेड मोबाइल आहे
17: कोई मसलो न आहे कोई मसलो न आहे
19: सलाम सिस्टर मिसिस अली ऐं फौजिया फरज़ाना राइब सुमरो मंताज सुमरो हुसैन बख़्शो हाफिज़ गुलाम अहमद सांबल ऐं जेके दोस्त ॿुधनि था उन्हनि सभिनी खे इरफान अली ते पारां खोड़ फरा सलाम
17: वालेकुम अस्सलाम इरफान पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो थैंक यू सो मच
19: थैंक यू अल्लाह
17: थैंक यू जी जनाब असां सभिनी सां गॾु इरफान अली थेबो ऐं इरफान अली थेबो जे बाद हाणे असां वठूं था शो जी हिकिड़ी ॿी कॉल पर ॿी कॉल खां पहिरीं मां तव्हांखे पंहिंजो नंबर ॿुधाइंदो हलां त जनाब असांजो नंबर आहे 03000113488 वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम हैलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जानी कहिड़ा हाल आहिनि केरु असां सभिनी सां गॾु अलहमदुलिल्लाह केरु असां सभिनी सां गॾु हैलो हैलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु असां सभिनी सां गॾु सॉरी पन्ने अकेले खां सनी था ॻाल्हायो आवाज़ जानू तव्हांजी नथी अचे हैलो Your desired number is busy at the moment. Please try later. तो जनाब असां सभिनी सां गॾु अलाए कहिड़ो भाउ हुयो जंहिंजी कॉल कटिजी वई आहे आवाज़ सही न पई अचे वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मुंहिंजा प्यारा केरु असां सभिनी सां गॾु मुख़्तियार अहमद भाई ॻाल्हायो था मुख़्तियार भाई किथां पिया ॻाल्हायो लड़काणे खां वेरी गुड माना लड़काणे वारा असांखे ॿुधनि था निशियात पुॼे थी ऐं अच्छा मुमताज़ लाशर जो कोई बि गानो ओके बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांजी फरमाइश रखनि ज़रूरु हलंदासीं त इहो ॿुधायो कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो अच्छा सही सही सही सही सही मां तव्हांखे बिल्कुलु मुमताज़ लाशारी ॿुधायां थो तव्हां बिल्कुलु दिलि जाए कयो त कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो अच्छा हलो ठीकु आहे मां हींअर ई तव्हांखे ॿुधायां था अदा मुख़्तियार भाउ
19: जी जी
17: गानो थैंक यू सो मच अदा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी जनाब हम चलाते हैं मुमताज लाशारी का कोई गाना जरूर अपने भाई मुख्तियार की फरमाइश पर और जो इरफान भाई थे उनकी फरमाइश पे हम इस प्रोग्राम इस घंटे के एंड में वो गाना चलाएंगे जो उन्होंने कहा था दिल में डायरेक्ट आ जाओ तो इस गाने को सुनिएगा मुमताज लाशारी का जबरदस्त गाना है सुनिए और सुनते रहिए आई लव यू ऑल शो विद अशफाक नियाज़ी ऑन जी एफ एम 88 नेटवर्क

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असां खे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको आहे असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, हुन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 साल खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: होते हैं, हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत होते हैं। बिल्कुल जनाब, और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात होती है। पोलियो को शिकस्त दें, अहद करें कि पोलियो के खिलाफ जंग में हर वालदैन का किरदार अहम है। अपने बच्चों को पोलियो के खतरे जरूर पिलाएं, एक छोटी सी एहतियात एक बड़े खतरे से हिफाजत। बच्चों को बचाएं पोलियो से बचाव के लिए कतरे जरूर पिलाएं, और अहद कीजिए कि मिलकर ऐसा पाकिस्तान बनाएं जहां कोई बच्चा भी पोलियो का शिकार बिल्कुल ना हो। तो ये कैसे हो सकता है जनाब? ये तब हो सकता है जब हम और आप बहुत सीरियस हो जाएंगे इस बीमारी को लेकर और इस बात को लेकर कि हमने हर बच्चे को, घर वाले बच्चों को भी और बाहर वाले बच्चों को भी पोलियो से बचाना है, क्योंकि पोलियो बूस्टर डोज बच्चों के मजबूत तहफ्फुज की एक जबरदस्त और मजबूत ढाल है। हर बच्चे को पोलियो के खिलाफ इजाफी तहफ्फुज जरूर दें, अहद करें सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो बूस्टर डोज जरूर लगवाएंगे आप अपने बच्चों को, क्योंकि आपका एक कदम बच्चों को पोलियो से महफूज रखने में अहम किरदार अदा कर सकता है। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां वहां तक के तमाम दोस्तों को एक बार फिर से बताता चलूं कि बच्चों को पोलियो से महफूज रखने के लिए बच्चों को पोलियो डोज जरूर दें, क्योंकि पोलियो के खिलाफ हमारी जिदोजहद हर बच्चे तक तहफ्फुज पहुंचाने का अज़्म है। बच्चों की बेहतर सेहत के लिए पोलियो बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, हर खुराक अहम है, हर बच्चा हमारे लिए महफूज होना चाहिए। पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। महफूज बचपन, महफूज मुस्तकबिल, पोलियो के खिलाफ हर खुराक अहम है। आइए मिलकर हर बच्चे को पोलियो के खिलाफ मजबूत तहफ्फुज फराहम करें। तो जनाब बिल्कुल, पोलियो बूस्टर डोज बच्चों के मजबूत तहफ्फुज की एक ढाल होती है, और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं, और जनाब पोलियो के खिलाफ जो हमारी जिद्दोजहद है वो हर बच्चे तक तहफ्फुज पहुंचाने का अज़्म होती है। आज से आप भी याद कर लें कि जितना हो सकेगा आप पोलियो की जो बूस्टर डोज है ये जरूर पिलाएंगे बच्चों को, और मुश्किल और दूर दराज इलाकों में भी हर बच्चे तक पोलियो से बचाव का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। पोलियो से पाक मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चे को बूस्टर डोज जरूर पिलवाएंगे, ये अहद कर लीजिए। महफूज बचपन, महफूज मुस्तकबिल, पोलियो के खिलाफ हर खुराक हमारी अहम है। तो जनाब जहां जहां पर आप नहीं पहुंच पा रहे हमारी पोलियो टीमें, तो जनाब उनके मकामी लोग उनकी हेल्प करें, और दूर दराज और मुश्किल रसाई वाले इलाकों में भी कोई बच्चा पोलियो से बचाव से मुहिम इस बचाव मुहिम से महरूम ना रहे, ये हम सबका अज़्म होना चाहिए। क्योंकि जब हम पाकिस्तानी अज़्म कर लेते हैं तो यकीन जानिए हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और जब पाकिस्तानी किसी बीमारी को खत्म करने का अज़्म ले लें तो फिर तो जनाब वो बीमारी खत्म होनी होती है। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब आप अपने इलाके, मोहल्ले और शहर से इस बीमारी को खत्म करें, बच्चों से पोलियो की बीमारी को खत्म करें। हमें इसे स्टेप लेना होंगे, जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, हिम्मत लेनी होगी और कुछ इनिशिएटिव लेने होंगे अपने बच्चों के लिए, अपने कौम के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की है, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और तमाम पोलियो टीमों के साथ फ्रेंडली रहकर उनको वहां तक पहुंचाएं जहां तक वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो जहां तक बच्चे पोलियो के कतरे पीना चाहते हैं। तो जनाब अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है, और अपने बच्चों को उन्होंने पोलियो के कतरे पिलाए या नहीं पिलाए ये जरूर पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मुझा प्यारा जानी के रसा सबनी सांग गडो
1: इसबाग बाग केरा अलन कुशा केरा तबीयत सेहत सही है।
0: फर्स्ट क्लास मुझा मिठा के रसा सबनी सांग गडो
1: बाग बाबा अली खान सुमरो।
0: अली खान सुमरो साहब कितना प्यार गायो केड़े शहर माओ
1: लड़काने वा
0: वाह वाह लड़काने वाला ताज खट्टी व्या
1: वा ये वा
0: आही ये सफा सफा ये रहंदा क्यों हमेशा
1: अल्लाह खुश कंदी वार अब सही।
0: अच्छा अदा यो तो बुधायो त तहां पोलियो जा फुरला पियारे आन पांजे बारन के लड़काना में
1: जीवा
0: पोलियो जा फुरला पियारे दा आयो तहां बारन के लड़काने में
1: हावा पियारी नयो टीम इंडिया।
0: हां माशाल्लाह माशाल्लाह कोऑपरेट कंदा आयो ना उन सा
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह ना सही है की भरपूर उन वातावरण होदो आसा जो
0: बिल्कुल गुसाइंदा भी कोने क्यों आई पाड़े वारन के बुझाएं क्यों तो पोलियो तमाम घनी खतरनाक बीमारी आए पांजे बारन के भी बचायो ना
1: इंशाल्लाह तरो पाड़े वारन के भी चंदा है दबा पांजे बच्चन के प्यारो जा गेटी में देसन आयो टीम इंडिया उनन के भी वडी प्यारी नयो बाबा पियो बचरा
0: इंशाल्लाह। अच्छा अदा यो बुझायो मुझा प्यारा भा नालो छा बुझायो मा विसरी हम अली खान सुबरो गानो केड़ो बुझन चाहो था
1: जीवा
0: गानो केड़ो बुझन चाहो था आज
1: सागे गानो भाई
0: डायरेक्ट वे दिल में बुधाया तो इरफान अली थेबो जी फरमाइश भी हुई तमां केंजे नाले ते करना चाहियो
1: सां सबनी टीम जे नाले
0: बस थैंक यू
1: थैंक यू
0: सदके वना या गाल थी ना ٹھیک ہے. تھینک یو ادا علی سمرو. تھینک یو تھینک یو. اوکے اللہ حافظ. جی جناب, علی سمرو کے بعد ہمارے ساتھ ہیں محمد خان کمبھار, بے وفا جمال کمبھار, محمد علی کمبھار, حالی پوٹرا اسٹاف لگ جلوری خان. شو لاجواب ہے. تھینک یو سو مچ ادا, تاں جو تمام گھنو تھینکس تمام سان جو شو بدھو پیا. جلوری اسٹاپ خان محمد خان کمبھار, بے وفا جمال کمبھار, محمد علی کمبھار, حالی پوٹرا اسٹاف لگ جلوری خان. شو لاجواب. تھینک یو سو مچ ادا. ہانے چھا کیوں ہانے شو جی نیکسٹ کال تھا وچاؤں ائی چاؤں تھا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب, کیر اسا سبھی سان گڈ آہے, لگے تو گرجدار آواز میں.
1: ارے ماں لار کے کلا رہا ہوں, اپ کو بالکل سنتے ہیں اکھن معذور تھا جو پروگرام بدھی رہے ہیں, بالکل بہترین پروگرام والے تو.
0: واہ واہ واہ واہ, زبردست, مطلب مزہ ہوتے تو پروگرام میں.
1: ہائے ہائے ہائے, دو چکر کی مطلب کیا کال کدے کیا تعریف کر دے تھا رہے ہیں
0: تھینک یو یار, تھینک یو. مجھے ایتری تعریف نہ کرو تو میں چیئر کھا گری نہ پوا. تھینک یو تھینک یو سو مچ. تا پان میٹھا ہو نیلا, تا کہ ہر شے میٹھی لگندی ہے, ہر کہ جی آواز میٹھی لگندی ہے. یہ بتاؤ جو ہانے میں گانا تو بتایا نا آدھا جانی, یہ کیڑو تو ڈائریکٹ وے دل میں جو کدی جو مجھے ایک دوست فرمائش کی عرفان علی, وہ بدائن بارو ائے تو کہ جنا تھا کرنا چاہو
1: سجی سنگت حوالے کر.
0: جی جی
1: سنگت باہر
0: واہ واہ, زبردست زبردست. ہی کلاک لڑکانے والا کھٹی ویان چھوتا, ان کلاک میں لڑکارے والے جی الہی کال جائیو ہیں.
1: بالکل دادی, دل خوشی تو یہ ہے دو شامل کیا
0: واو
1: بدل کیا چا گال کیا شامل کرے.
0: اچھا مجھے گانوں بھی بدائیں ہلو, کوئی نہ کوئی یار پانچ ایک بار لائن یا کوئی شیر. اچھا اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ سب غم دور کرے, اسا جی یہی دعا ہے. ہاں یار ان شاء اللہ ان شاء اللہ ضروری سمیرا چھو تا وہ پانی زندگی کے کمن کارن میں ہے, تو جی فارغ تھی ان شاء اللہ ضروری. بالکل بالکل بالکل ان شاء اللہ ان شاء اللہ تاجی یہ بھی خواہش پوری تھی ان شاء اللہ. تھینک یو سر تھینک یو سر تھینک یو. تو بالکل جناب بس ہلائے چکا ہوں عرفان جی فرمائش سے ڈائریکٹ دل میں, تو بالکل یہ گانا ڈائریکٹ بدھو انجوائے کیا.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खैबर पख्तूनख्वा ऐं बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्तीअ में सरगर्म फितने ख्वारिज ऐं फितने हिंदुस्तान जा 49 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस ऐं पुलिस ॿिन्ही सूबनि में गॾियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया। खैबर पख्तूनख्वा जे बनू, उत्तर वज़ीरिस्तान, औरकज़ई ऐं खैबर वारनि इलाइक़नि में भारतीय सरपरस्तीअ में सरगर्म फितने ख्वारिज सां तालुक रखंदड़ 12 ख़ारिजी दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। बलोचिस्तान जे मस्तोंग, मच, खुज़दार ऐं पंजगोर वारनि इलाइक़नि में बि फितना हिंदुस्तान सां तालुक रखंदड़ 37 दहशतगर्दनि खे जानम भेड़ो कयो वियो। ऑपरेशन दौरान वॾे मक़दार में बारूदी मवाद, हथियार, IEDs ऐं मोटरसाइकिलूं हथु कयूं वयूं। मुल्क जे अमून इस्तेहकाम खे नुक़सान पहुचाइण वारनि कोशिशुनि खे असराइते अंदाज़ में नाकाम बणायो वियो। मुल्क मां दहशतगर्दी जे नासूर जे मुकमल ख़ात्मे ताईं मुहिम जारी रखी वेंदी।

नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जी सदारत ते टेक्निक जे इजलास दौरान सिंध जो लाहौर सियालकोट मोटरवे मनसूबे जी मंजूरी ते एतराज़। पंजाब में नवा मोटरवे मनसूबा शुरू करण खां अॻु सखर हैदराबाद मोटरवे मनसूबे ते कम शुरू करण जो मुतालबो। आपाशी वारे वज़ीर जाम खान शोरो चयो त सखर हैदराबाद मोटरवे सिंध जो पुराणो इंतिहाई अहम मनसूबो आहे। वज़ीर आज़म जे वाइदे ऐं केतिरा ई साल गुज़रण बावजूद उन ते कम शुरू नाहे थियो। सिंध जो मनसूबो इल्तवा जो शिकार ऐं पंजाब जे मनसूबे लाइ फंड्स मुख़्तस करणु मुनासिब न आहे। सखर हैदराबाद मोटरवे ते कम शुरू थियण खां पोइ भले ॿियनि सूबनि लाइ मनसूबा मंज़ूर कयो, सिंध खे हाणे ऐलान न पर अमली कमु घुर्जे।

पीटीआई बानीअ खे अलशिफा अस्पताल बदिरां पिम्स मां तिबी मुआइनो करण बाद जेल मुंतकिल करण ते अपोज़िशन जो सख़्त रद अमल। अपोज़िशन लीडर महमूद ख़ान अचकज़ई जी सदारत हेठि मुख़ालिफ़ धुर जे अॻवाननि जी अहम गॾिजाणी। अॻवाननि गॾियल प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त काल्ह जेको कुझु थियो हुन जो अंदाज़ो न हो। अदालत मेडिकल बोर्ड जोड़ण जो हुकुम ॾिनो हो, हुन ते अमल न थियो आहे। टिनि सालनि खां अदालतुनि जा चकर लॻाए रहिया आहियूं पर इंसाफ़ न पियो मिले। हाणे इंसाफ़ लाइ अवामी अदालत में बि वेंदासीं।

पीटीआई बानीअ जो तिबी मुआइनो अलशिफा अस्पताल न पर पिम्स अस्पताल में कयो वियो। वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताड़ जो इतराफ़। अता ताड़ जो चवण हो त डॉक्टरनि पारां तिबी तौर सेहतमंद करार ॾियण खां पोइ पीटीआई बानीअ खे सुबुह 5 वॻे ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वियो। पिम्स में अलशिफा अस्पताल जा डॉक्टर बि मौजूद हुआ। पीटीआई बानीअ जी भेण उज़मा ख़ान इलाज जे समूरनि मरहलनि दौरान मौजूद रही। पीटीआई कारकुननि जे करे जेका सूरतहाल रस्ते में ऐं अलशिफा अस्पताल ॿाहिरां पैदा कई वई उनखे नज़र में रखंदे पीटीआई बानीअ खे पिम्स अस्पताल आंदो वियो। पार्लियामानी मामलनि वारे वज़ीर तारिक़ फज़ल चौधरी जो चवण हो त पीटीआई बानीअ जा ज़रूरी तिबी मरहला मुकमल थी विया आहिनि, सिहत जे मामले ते सियासत न कई वञे।

वफाकी हुकूमत पीटीआई बानीअ खे अस्पताल मुंतकिल करण वारे केस में ॿीहर नज़रसानीअ जी दरख़्वास्त दाख़िल करे छॾी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद तरफ़ां रजिस्ट्रार ऑफिस जा एतिराज़ ख़तम करे नज़रसानीअ जी मुतफ़रक़ा दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कराई वई। इन खां अॻु अदालत नज़रसानी दरख़्वास्त एतिराज़ लॻाए वापसि कई हुई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाब बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि, अलाह जे हुकम सां उहे ख़तम थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
5: ख़ुशख़बरी, ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
2: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन।
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 0331252576।
2: जी हाँ 2315525786।
7: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: हमारा नंबर है जनाब कॉल करने के लिए 03000113488। अस्सलाम वालेकुम। हेलो ओए होए, हमारे कॉल्स में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई है, बट डोंट वरी गाइस, हम आपके साथ, आप हमारे साथ हैं। तो जनाब ये सारी जो मसले मसाइल होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं, वो हम लोग जो है मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं। वेल कोई गल नहीं है जनाब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। खैर जनाब 6:13 हुआ चाहते हैं और शाम के ढलते साए हैं, और शाम के ढलते साए में यकीनी तौर पर आप भी कोई नेक और अच्छे काम कर रहे होंगे, क्योंकि जनाब नेक और अच्छे काम करने वालों की हमारे पास कोई कमी नहीं है। किसी को मुस्कुरा के देखें तो भी सदका है, किसी को मुस्कुरा के देखें तो भी नेकी है। कोई अगर रोड क्रॉस कर रहा है तो बुजुर्ग बच्चा उसकी हेल्प कर लें तो जनाब देखें यह भी नेकी होता है। तो हम हमारे इस्लाम में हमें बहुत ज्यादा सहूलतें दी हुई हैं कि छोटी छोटी बात पर भी आप लोग नेकियां कमा सकते हैं, आप लोग सवाब कमा सकते हैं। तो जनाब देर किस बात की होती है, आप हमेशा सवाब और नेकियां कमाने में कभी भी पीछे ना रहा करें और सवाब और नेकियां जरूर कमाया करें, ताकि जनाब आपके जो हशर वाला दिन जो होगा उसमें आपका वर्ल्ड बैंक जो होगा ना, आपका जो बैंक वो अकाउंट, उसमें जो नेकियां बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हुआ करेगी। हमें ना कभी भी ये मगरूरी नहीं होनी चाहिए कि यार मैं उसकी हेल्प क्यों करूं या मैं उसकी आगे बढ़कर मदद क्यों करूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मगरूरी इंसान को कहीं भी नहीं रहने का कहीं का भी नहीं रहने देती है। बिल्कुल जनाब, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि मगरूर जो इंसान होता है ना, वो किसी काम का नहीं होता। बिल्कुल जनाब, और किसी काम का ना होने के साथ साथ मगरूर इंसान उस परिंदे की तरह होता है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद हो जाता है ना, लोगों की नजरों में उतना ही छोटा होता जाता है। तो मगरूर इंसान तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, इसलिए मगरूरी कभी भी ना किया कीजिए। भले आपका आप किसी भी ओहदे पर हो, भले आप लाखों रुपए तनख्वाह उठा रहे हो, भले आपका ओहदा कोई भी हो, मगरूरी किसी भी इंसान को सूट नहीं करती है और ये होनी भी नहीं चाहिए किसी भी टाइम मगरूरी। लेते हैं शोकी एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, मुझे प्यारा भाग केरा सा सबनी संग गड
1: हां
0: जी, जलूरी का खालिक भा, मुझे चाय अच्छी भैया, तो अकेला अकेला चाय मुझे ख्याल में पियो था, मुके तो सर भी कोन के तब
1: नहीं चाय जाम निकला जलू के निकली चाय, अगर आवाज होते तो कर पी
0: तो ना। अच्छा, जलूरी की चाय माने इतनी मीठी होती है, इतनी जबरदस्त होती है।
1: बिल्कुल
0: वाह वाह वाह, मुझे भी हाँ चाय अच्छी भैया, असो वसीम भा भी तमाम घड़ी सुठी चाय ठाई तुम चाय पियो, मां भी चाय पिया। तो यो बुधायो ता तां जे गोठ जो मौसम की हा?
1: सही मौसम तमाम आने सुठो है, सही मुंडी थदड़ी लगन तो हियर भी थदड़ी आवा में बिठायो
0: आ अच्छा जबरदस्त भले कुछ भी थी वने, अगस्त एतरो थदो कदी भी कोन थिवाए जेतरो हाने थिवा, माने रातियों अगस्त दी रातियों हमेशा गरम हुंदियों, हफ्स वारी हुंदियों, पर इन वक्त अल्लाह साईं जो खास करमत अगस्त जी रातियों जेको आए थदियों थी वयन।
1: जी बिल्कुल
0: हाँ। खालिक भाई बुधायो गानो केड़ो बुधन चाहो था?
1: सही गानो ममता लाशारी जे करे को भी सुठो गानो बुधायो
0: था। अच्छा, मुमताज लाशारी जो तो हाने माप लेके आ थोड़ी देर पहरी।
1: जी
0: हाँ, वरी बियर
1: शमन मीराली जो बुधाय जे
0: ओके या भी सही आ, केड़ो शमन जो
1: को भी सुठो लगे नव गानो ने मिठो तो गलाई मो सा यो।
0: अच्छा मिठो तो गलाई।
1: जी
0: नौ कलाम आया ओके मिठो तो गलाई। हेलो बा कहीं जाना था करना चाहे
1: दोस्त कुछ बुझना था, मामा नजीर दरबार है अभी खोल गया, कुर्बान अली खास के लिए गुलाम रसूल मरिया यार मोहम्मद खोल गया।
0: अच्छा बस
1: मेहरबानी,
0: ठीक आता, थैंक यू खालिक भाई, थैंक यू सो मच। जी जनाब, हमारे साथ खालिक भाई, और खालिक भाई जलूरी से कॉल कर रहे थे तो कह रहे थे कि हवाएं चल रही हैं, मजा आ रहा है। तो जनाब बहुत अच्छी बात है कि आपको मजा आ रहा है, जिंदगी के मजे लेने चाहिए, क्योंकि जनाब जब जिंदगी के मजे हम लोग लेते हैं तो फिर हमें सारे गम और दुख भूल जाते हैं, और हम चाहते हैं कि आपको सारे गम और दुख भूल जाएं और आप हमारे साथ शो में रहकर एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अशफाक भाई,
0: हाय के रसा सबनी संग रदा
2: साईं तमाशा कत रंजन कोरी मीरपुर खास कोरी देखो
0: रंजन भा, मुझे रंजन भा आयो आ केड़ा हाल चाल है
2: आईन कर तमा बतायो
0: फर्स्ट क्लास मुझे प्यारा रंजन भा, यो बतायो छा कयो था आजकल
2: साईं? आऊं खाली चौकीदारी कंदो है, आऊं बैठो है, बियो नालो छायो पंज गुजारत जो जवाब आए ओ गुजारत गुजारत मतलब
0: हां बिल्कुल मैं सवाल तमा का कयो तो वो केड़ी शय आ जेका वो केड़ी शय आ जेका भजन दी आए तो आवाज नहीं दिया
2: साईं वो गुजारत
0: वो गुजारत आ।
2: जी
0: ओके ॾिसूं था त तव्हांजो सवाल जो जवाब ठीकु आहे या कोन आहे, पर तव्हां इहो ॿुधायो त हाणे जी जी
2: मुंहिंजो दोस्त डॉक्टर लालचंद, डॉक्टर फरहान
0: जी,
2: ऐं नियाज़ जून जो, नज़र जून जो, अली जून जो, इमरान पुट जून जो, जानी जून जो,
0: वाह वाह,
2: ऐं डॉक्टर फरहान
0: जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू रंजन भाई, पांजो खास ख्याल रखो, तमाम दोस्तों के असानो सलाम दीजो। जी जनाब, हमारे साथ थे रांझण भाई, और रांझण भाई बहुत अच्छे बाद हमारे साथ शो में आए थे। इलाही टाइम खां पोए रांझण भाई आया, इन के भी शमन जो गानों बुधायूं था। बिल्कुल जनाब, हाने वठूं था शो जी एक भी कॉल ही चाहूं था पांजी कॉलर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारा केर हुसैन बख्सियाल साहब, कड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आयो, तहारी संगत सब की मौजूद आन। यो बुधायो सियाल भात, कम कार कंदा आयो, कें तो हले तां जो कम कार?
3: हा बिल्कुल सही फरमायो, आऊं एज अ फार्मर आया।
0: अच्छा,
3: हा बिल्कुल, गोठाणो आदि में आहियां, गोठ में रहंदो आहियां, ॿ टे ज़मीन जा कास्ट कंदो
0: आहियां,
3: महिनत करे उपाय करे हथ कलाक रोटी कमाए करे
0: पंहिंजे बचनि खे
3: ज़िंदगी सुठी थी गुज़ारींदो आहियां।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तमामु माशाला तमामु साबरीन माण्हू आहियो, शुक्र गुज़ार माण्हू आहियो, ऐं हक लाल जी मानी पाण बि खाईंदा आहियो, ॿारनि खे बि खाराईंदा आहियो, त अॼु जे दौर में अगरि इहा माण्हू साबरीन बि हुजे, शुक्र गुज़ार बि हुजे, ऐं हक लाल जो बि खाईंदो हुजे, त पोइ उहो माण्हू तमामु घणो माशे जे लाइ क़ीमती सरमायो हूंदो आहे। तव्हां असांजो क़ीमती सरमायो आहियो।
3: बिल्कुल, अलहमदुल्ला हमेशह करीम रब जा शुक्र अदा कंदा आहियूं,
0: जो
3: असांखे अलाह सां सिहत ॾिनी आहे, ऐं पंहिंजे हथनि सां हिन गर्मीअ जी मौसम में सर्दी में पंहिंजी महिनत करे पंहिंजे हकल रोटी कमाए
0: बेशक बेशक बेशक, अला तव्हांजो सुकून बरकरार रखे, हिन में वाधाई आणे, ऐं तव्हांजे रिस्क में बरकत आणे, तव्हां ई हमेशह ख़ुश रहो, ऐं असांखे ॿुधंदा रहो। शमन जो गानो ॿुधायां थो, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो था?
3: बिल्कुल सर, बिल्कुल दसां थो, पर मां हिकिड़ी ॻाल्हि तव्हां शेयर कयां त अलहमदुल्ला आऊं अॼु ॾाढो ख़ुशि आहियां। प्रोग्राम में शामिल थियो
0: आहियां,
3: मुंहिंजो वक़्तु न पियो लॻे, मुंहिंजी कॉल न पई लॻे।
0: अच्छा, पर अॼु तव्हांजी कॉल लॻी वई आहे, असांखे बि तमामु घणी ख़ुशी थी आहे त अहिड़े ज़बरदस्त माण्हू सां असां ॻाल्हायूं था।
3: बिल्कुल सर, अलहमदुल्ला अॼु ख़ुशि आहियां, अॼु जेको आहे बाक़ी जेके कलाक थोरा सिजे बचे इहो ई मुंहिंजो ख़ुशी गुज़रंदो, ऐं मां यकीन ॾियां तव्हांखे अॼोकी राति ई मुंहिंजी छुटियुनि जी गुज़रंदी जे मां तव्हांजे प्रोग्राम में शामिल।
0: थैंक यू सो मच,
3: प्यारनि सां गॾु आहियां।
0: थैंक यू मुंहिंजा जानी, मुंहिंजा प्यारा, तव्हांजी इहे मुहबत आहे, तव्हांजो प्यार आहे, त तव्हां असां सां ॻाल्हाईंदा आहियो, असांजे शो में शिरकत कंदा आहियो, ऐं वॾे गौर सां टाइम कढी करे असांखे ॿुधंदा आहियो।
3: बिल्कुल सर, अलहमदुल्ला, ऐं इहो जेको शमन अली जो जेको सॉन्ग आहे न,
0: जी जी जी, मिठो पियो ॻाल्हायूं,
3: ऐं जेको बि असांजो एटीएट नेटवर्क जेकी बि असांजा दोस्त ॿुधनि था, ॿाहिरि भेनरूं,
0: जी जी,
3: हुननि जे मां जेकी करे कंदुसि, ऐं ख़ासि करे तव्हांखे, तव्हांजी टीम खे, ऐं साईं बाबर साहब जी मां इहो जेकी करे कंदुसि,
0: त
3: सदा तव्हां ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, पंहिंजो ख़्यालु कजो, असांखे दुआनि में यादि कजो।
0: बिल्कुलु, तव्हांजो प्यारो नालो वरी ॿुधाए छॾियो मूंखे।
3: हुसैन
0: बख्शियाल साहब, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, असांखे बि हर ॿी प्रोग्राम में ज़रूर कॉल कजो। थैंक यू अदा सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी जनाब, हुसैन बख्शियाल भाई हमारे साथ मौजूद थे, और माशाल्लाह बहुत प्यारे से इंसान थे, जो कहते थे कि मैं अपना हाथों से रिस्क हलाल कमाकर बच्चों को खिलाता हूं। और इस दौर में, वैसे यार दोस्तों आपस की बात है कि इस दौर में भी अगर कोई इंसान ये सब कुछ कर रहा है, अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, रिस्क हलाल कमा रहा है, तो वो वाकई हमारे लिए सरमाया हयात है, और हमारे लिए, हमारी कौम के लिए एक हीरो है। तो हमारे हीरो हमारे साथ मौजूद थे, लेते हैं शो की एक और कॉल। आप देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पर कौन आ चुके हैं। जनाब कॉल में थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, पर कोई गल नहीं है, लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
4: वालेकुम अस्सलाम सर।
0: जी जनाब, केड़ो प्यारो भाव मुसा घर मौजूद है।
4: इशफाक नियाज़ी साहब, सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर शहर रसलदार को नज़ीर अहमद जखरानी।
0: नज़ीर अहमद जखरानी बॉर्डर का माना सिंध पंजाब बॉर्डर
4: बलोचिस्तान रसालदार को नज़ीर अहमद जखरानी तव्हां सां मुखातिब आहे।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़ीर साहब कहिड़ा हाल चाल अथव, ठीक ठाक आहियो?
4: करम आहिनि अलाह ज़ात जा, तव्हां ख़ुशि आहियो सर?
0: फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। साईं, इहो ॿुधायो त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका टुटी वञे त आवाज़ कोन ईंदी आहे?
4: उहो सर साह जो डोरी आहे।
0: साह जो डोरी आहे, थी सघे थी, थी सघे थी, मे बी पॉसिबल। तव्हां इहो ॿुधायो जखरानी भाउ, तव्हांजे इलाइक़े में माना उहा सरहद में कहिड़ी हवा थी हले या गर्मी अञा?
4: سر گرمی ہے سر
5: اوئے ہوئے بھلا تو چھو
4: گرمی کو بعد پو والا ہے تو سر
5: ہاں چھو بھلا تو چھو ہی ہے تے منا اتا اتا تا تھدیوں راتوں شروع تھی ویوان
4: موسم دے چکران سر انی صاحب
5: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح یہ بتاؤ شمن جو گانو پلے کہاں تھا جکرانی بھا کہن جنا تے کرنا چاہو
4: ہاں اشفاق نیازی صاحب ان کو علاوہ سید زاہد علی شاہ صاحب ایڈا مجھے پیاری پیارو دوست بدے تو چاچا رجب جونے جو ایئرپورٹ روڈ میں تمہاں کے بدے تو
5: اوکے چاچا رجب جونے جو صاحب کے سلام
4: ان کو علاوہ نذیر امن منگریو صاحب سید زاہد علی شاہ صاحب محمد

0: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आहिनि त असां जॾहिं हिकु दफ़ो ॿारनि खे पोलियो जा ख़तरा पीआरिया आहिनि त वरी ॿीहर छो पीआरियूं। मुंहिंजो नालो मुफ़्ती मुहम्मद अहमद आहे। त इन जो आसान जवाबु इहो आहे, ही ॿार बि असां वटि अल्ला ताला जी हिकु वॾी नेमत आहिनि। ॿारनि जी सिहत जो ख़्यालु रखणु लाज़मी ऐं ज़रूरी आहे। असांजे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूदु आहे। ही पोलियो बूस्टर ॿारनि जी क़ुवत मुदाफ़त जे वधाइण में मदद करे थी। 10 साल जी उमिरि ताईं जेतिरा बि ॿार आहिनि उन्हनि खे ही बूस्टर जी इज़ाफ़ी खुराक लॻाइणु लाज़मी आहे।
1: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी,
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: ईअं बिज़ी न रहंदा कयो न, ॾिसो न वरी असां तव्हां सां ॻाल्हाईंदासीं न।
1: साईं आवाज़ जो महिरबानी
0: हा जबरदस्त आहे, पर जबरदस्त प्रोग्राम में जबरदस्त कॉलर्स बि था अचनि न, जीअं तव्हां तव्हां असांखे मुंहुं न ॾेखारींदा आहियो वरी हलिया वेंदा आहियो, भला छो?
1: इनशाला
0: हा गुड गुड गुड, असां चाहियूं था त सभु ॿुधनि। ॿिया आज़ीज़ भाउ ख़ुशि ठीक ठाक मज़े में? हा जबरदस्त, कमु कार कीअं थो हले तव्हांजो? वेरी गुड वेरी गुड। ऐं इहो ॿुधायो त हाणे मां जेको गानो थो प्ले कयां कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो? गानो कंहिं फरमाइश कयो आहे त मुमताज मौलाई जो हलायो?
1: न न, उहो त मुमताज मौला जो ॿुधंदासीं, पर सवाल आवाज़ जे प्रोग्राम में
0: आहे। हा सवाल इहो आहे त उहा कहिड़ी शइ आहे जेका भॼी वञे त आवाज़ कोन ईंदी
1: आहे?
0: भरोसो। ओके ओके, मां एंड में ॿुधाईंदुमि त छा आहे, पर तव्हां पंहिंजी कोशिशि कई आहे, थैंक यू सो मच। इहो गानो हाणे कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो था? वाह वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू अज़ीज़ भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। महिरबानी महिरबानी महिरबानी अज़ीज़ सोलंकी साहब, असां सभिनी सां गॾु हुयो इलाही अरसे खां पोइ, त बिल्कुल जनाब असां इहो गानो बि ज़रूरु हलाईंदासीं, तव्हां सभिनी दोस्तनि जी फरमाइश ते बि वठूं था हाणे शो जी नेक्स्ट कॉल। चऊं था पंहिंजे कॉलर खे अज़ीज़ सोलंकी जे बाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भाउ, केरु असां सभिनी सां गॾु? गुलाम मुस्तफ़ा घोटकी, ख़ैर सां घोटकी वारा बि पहुता आहिनि?
2: जी साईं।
0: घोटकी वारा सभु कीअं आहिनि, खैरपुर मज़े में आहिनि, ख़ैर में आहिनि?
2: ख़ैर लॻो पियो आहे, सफ़ा अमुन।
0: जबरदस्त जबरदस्त, सदा इहो ॿुधायो छा कमु कार कयो था ऐं कमु कार कीअं थो हले तव्हांजो?
2: पोल्ट्री जो कमु आहे।
0: अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माना पोल्ट्री जो कमु आहे त फार्मी मुर्गियुनि जो?
2: जी साईं जी।
0: त कीअं हले थो हिकु दाणो?
2: इहो हले रेट माना हलंदो चढ़ंदो आहे, कंहिंमहिल 500 रुपया गोश्त हले थो, कंहिंमहिल 450।
0: अच्छा, जॾहिं कोई अफ़वाह अफ़वाह छॾे ॾे थो त माना मुर्गियुनि में वायरस अची वियो आहे त पोइ सस्ती थी वेंदियूं आहिनि, ईअं न?
2: हा
0: अलाह केरु कंदो। अच्छा अदा घोटकी वारा भाउ, मां गानो थो हलायां मुमताज़ मौलाई जो, कंहिंजे नाले सां करणु चाहियो?
2: जेके ॿुधंदा सभिनी
0: सभिनी जे नाले। थैंक यू मुंहिंजा प्यारा भाउ, थैंक यू, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। जी जनाब, हम गाना भी प्ले करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि एक और कॉल ले लें आपकी। चले जनाब, गाने के बाद हम कॉल लेते हैं, शायद ऐसा कर लें, जैसे आपकी मर्जी। नहीं, ले लेते हैं कॉल, एक यार क्या याद करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम।
3: भाई कॉल ड्रॉप हो गई थी।
0: हाँ कॉल ड्रॉप हो गई थी। सोना भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं
3: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाए आप कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी है?
0: देख लें, आपकी किस्मत अच्छी है कि मैंने वो कॉल ना लेते लेते भी ले ली।
3: इंशाल्लाह
0: इंशाल्लाह, जरूर जरूर। अच्छा ये गाना जो मैंने प्ले किया, अब आप किसके नाम करना चाहेंगे?
3: हाँ सर, सबसे पहले ये नाम करूंगा जमालुद्दीन भाई को, आपको सुन रहे शिकार पर।
0: हाँ उनकी कॉल भी नहीं आई बात है। जी जी।
3: और उसके बाद जो इन अली हसन भाई को डेडिकेट कर लेंगे, जवार बच्चन संभारी को डेडिकेट कर लेंगे, और आपको और आपकी पूरी टीम को डेडिकेट कर लेंगे सर। और कुछ जाति वो चलाना तेरा मुखड़ा
0: तेरा मुखड़ा। अच्छा आपका साइनिंग गाना है, ठीक है इंशाल्लाह वो जरूर चलाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे से भाई।
3: मैं आपका आपका शो सुन रहा हूँ सर, ये जरूर चलाना।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। ठीक है थमना भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जनाब, सोना भाई हमारे साथ थे। सोना भाई के बाद हम प्ले करते हैं एक जबरदस्त गाना, सुनिए और हमारे साथ रहिए।

0: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हा तव्हां जे ॻोठ वारा सभु कीअं आहिनि, कहिड़े हालनि में आहिनि?
1: ख़ुशि लॻा पिया, पेट लॻा पिया।
0: माशाल्लाह। हाशिम भाउ छा कमकार कंदा आहियो? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इहो ॿुधायो त हाणे जेको मां शहज़ाद रॉय जो गानो ॿुधाइण वारो आहियां, तेरा मुखड़ा हसी, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
1: अब्दुल भाई रोईंदड़ो।
0: जी जी जी।
1: मुंहिंजो भाउ सरफराज रोईंदड़ो, अजनेर रोईंदड़ो।
0: जी जी जी जी।
1: मुंहिंजो पुट आसान कोन रोईंदड़ो।
0: जी।
1: सही रोईंदड़ो। सजाद रोईंदड़ो, काबिल रोईंदड़ो।
0: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हाशिम भाव। जी जनाब, हमारे साथ है हाशिम भाई, और हाशिम भाई के बाद हम देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन है। आप हमें कॉल कीजिए 03000113488। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: जी जनाब, खैर सा सबनी सा गद जमाल दीन भयो साहब, चाल चाल छा हाल चाल है तांजो? मजे में मजे में। सोना भाई जी कॉल आई, चवन पे आता मामा जमाल तवा के बुद्धि पे होते।
2: जी जी बिल्कुल।
0: जी सिग्नल जो आज तमाम घणो प्रॉब्लम आयल है छो तो बो। जमाल साहब, तवा जो छा हाल चाल है? ठीक ठाक आयो? शिकारपुर वाला सब खैर में? माशाल्लाह माशाल्लाह। यो बुधायो तो आज मां ताजी फरमाइश पेरी हलाए छरी आ मुमताज लाशारी जो गानो, पर हाने जो को गानो तो हलाया केंदे ना थकन चायो? जी जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू जमाल भाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जनाब, हमारे साथ है जमाल भाई फ्रॉम शिकारपुर, और 6:52 हुआ चाहते हैं, टाइम बहुत जल्दी से स्पेंड हो रहा है। जनाब, हम चाहते हैं कि आपकी कॉल्स पे कॉल्स लेते जाएं, और लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, केरे सा सबनी सा गड?
3: वहीद सुमरो लुकमान का गड़ा।
0: वहीद सुमरो साहब फ्रॉम लुकमान, केड़ा हाल चाल है वहीद भाव?
3: चंगो लॻो तव्हां ॿुधायो पंहिंजो हाल।
0: माशाल्लाह अलहमदुल्ला भाई, छा कंदा आहियो?
3: मां दही भला विकिणंदो
0: आहियां। वाह, करारा करारा दही भला, मिर्चनि वारा दही भला।
3: तव्हांजी आवाज़ में थोरो मसलो आहे, कटिजे।
0: मुंहिंजी आवाज़ में त पैदाइशी मसलो आहे, त हाणे अलाई इन में छो मसलो आहे? अच्छा अदा दही भले वाला भाउ, नालो छा ॿुधायव?
3: न न, आवाज़ कटिजे थो न, सही नथो अचे।
0: मुंहिंजी आवाज़ छो थी कटे? कहिड़ी दुश्मनी आहे इन लाइन वारनि खे मूंसां? हाणे अचे थी अदा? भलीकार भलीकार, तव्हांखे असां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चऊं था मुंहिंजा प्यारा भाउ। नालो छा ॿुधायो अथव?
3: वहीद सुमरो।
0: वहीद भाउ, इहो ॿुधायो त हिक दही भले जी प्लेट घणी था ॾियो? हिक दही भले जी प्लेट घणी था ॾियो?
3: 50 रुपए।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, कमकार सुठो थो हले।
3: शुक्र आहे मालिक जो,
0: जबरदस्त। असां बि कॾहिं ईंदासीं लुकमान में, तव्हांजी दही भले जी प्लेट ज़रूर खाईंदासीं। थैंक यू सो मच वहीद भाई। ॿुधायो गानो थो हलायां शहज़ाद रॉय जो, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
3: बाबा जेके ॿुधनि था हुननि खे, सॼनि खे डेडिकेट थो कयां। वहीद वफ़ाई आहे न हुनखे?
0: अच्छा, वहीद वफ़ाई जेको ईंदो आहे, वहीद जतोई। हा गुड, वहीद पंहिंजे हम नाम वहीद खे डेडिकेट थो करे। थैंक यू अदा, अला तव्हांजे ख़ुशि रहो। थैंक यू। जी जना, बहुत सारे चटपटे से प्यारे भाई हमारे थे वहीद भाई, और वहीद भाई के बाद अब हम लेते हैं शो की बिल्कुल लास्ट कॉल, और देखेंगे कि हमारे साथ लास्ट कॉलर कौन आ रहे हैं जिनके साथ हम गपशप करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, के रहा सबनी सा गड़?
4: भाई जान, इमदाद अली शाह बात कर रहा
0: हूँ। इमदाद अली शाह साहब?
4: जी जी।
0: इमदाद भाग? हाँ अलहमदुल्ला। इमदाद भाग, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक आयो? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। तव्हांजा ॻोठ वारा, शहर वारा, घिटी वारा, पाड़े वारा सभु कीअं आहिनि? आमीन आमीन। तव्हांजो कमु कार कीअं थो हले? जबरदस्त। अच्छा, इहो ॿुधायो, उहो कहिड़ी शइ जेका भॼंदी आहे त आवाज़ कोन ईंदी आहे?
4: भॼंदी आहे त आवाज़ न ईंदो आहे, उहो कूड़।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तव्हां पंहिंजे हिसाब सां पंहिंजो आंसर ॾिनो आहे, मां जेको ॿुधाईंदुमि उहा लास्ट में ॿुधाईंदुमि। अच्छा, इहो ॿुधायो इमदाद भाउ, तव्हां गानो ॿुधायां थो शहज़ाद रॉय जो, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो?
4: हा हा, असां जा दोस्त आहिनि कुझु हुनजा नाला वरिता हुन खे डेडिकेट कंदा
0: ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु
4: तव्हां जे प्रोग्राम में एंट्री थी आहे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे दोस्तनि खे यादि करणु बि ज़रूरी आहे
0: ज़रूरु ज़रूरु कयो अदा
4: हा त ज़मान मोहम्मद बच्चन छपाणी आहे असांजे प्यारो दोस्त नारे में तव्हांजे ॿुधे पियो ऐं हुन खां अलावा रियाज़ विसरणी आहे हर्ष बिलाको आहे ऐं जिथे जिथे आवाज़ वञे थो ऐं जिथे दोस्त खे ॿुधनि था हालांकि नालो नाला नथा अचनि पर सभिनी खे सलाम
0: सभिनी खे सलाम वालेकुम असलाम अदा थैंक यू थैंक यू जी जनाब अब हम आपको सवाल का जवाब देंगे वो कौन सी चीज है जो कि टूट जाती है तो आवाज नहीं होती तो वो है वादा वादा जब टूट जाता है तो आवाज नहीं होती आपने अपने अपने हिसाब से सही आंसर दिए हैं क्योंकि जितने लोगों ने आंसर दिए हैं तकरीबन वो चीजें भी टूट जाएं तो आवाज नहीं आती है अशफाक चाहते हैं आपसे ज्यादा सोना भाई की फरमाइश पर मैं गाना प्ले कर चुका हूँ
5: कर गया ये दिल ले गया मेरी जान हाय
0: इस गाने को सुनिए अशफाक नियाज़ी को दीजिएगा इजाजत रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिएगा कभी किसी का दिल मत तोड़िएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक केयर गुड बाय हैव अ नाइस डे लव यू ऑल एंड अल्लाह के बान

0: تهذيب وثقافة السجي سند.
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: बलोचिस्तान में दहशतगर्द असांजे माण्हुनि खे शहीद करे रहिया आहिनि। मजदूरी कंदड़नि खे सुञाणप जे बुनियाद ते क़तल करणु जाइज़ न आहे। जेको मसलनि जे आड़ में बंदूक खणी वठे उहो मोहबे वत नथो थी सघे। बलोचिस्तान खे दरपेश मसला ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थियणु घुर्जनि। वज़ीर आज़म जो बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप खे ख़िताब। शहबाज शरीफ चयो त बलोचिस्तान ऐं ख़ैबर पख़्तूनख़्वा में दहशतगर्दी जे पुठियां दुश्मन मुल्क आहिनि। फील्ड मार्शल सां गॾिजी कराचीअ खां चमन ताईं N25 शाहराह तामीर करे रहिया आहियूं। बदकिस्मतीअ सां मनसूबे ते कम कंदड़ मज़दूरनि खे शहीद कयो वेंदो आहे। बलोचिस्तान वसीलनि ते पहिरियों हक़ सूबे जे अवाम जो आहे। जॾहिं चारई सूबा गॾिजी हलंदा तॾहिं ई मुल्क तरक़ी कंदो।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो आहे त बलोचिस्तान ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल हिकु ऐं हमेशह लाइ गॾु आहे। फितना ख़्वारिज ऐं फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसरनि जूं प्रॉक्सीज़ आहिनि, जेके रियासत ऐं अवाम विच में विछोटियूं पैदा करण लाइ इस्तेमाल थी रहियूं आहिनि। दुश्मन जूं समूरियूं साज़िशूं क़ौम जी गॾियल अज़म ऐं रियासत जी मज़बूत ऐं फैसलाइती रदे अमल सां नाकाम बणाईंदासीं। ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सां बलोचिस्तान जे अहम शख्सियतुनि ऐं सियासी क़यादत GHQ में मुलाक़ात कई। मुलाक़ात दौरान बलोचिस्तान जे अमन अमान इस्तेहकाम ऐं तरक़ीअ में नौजवाननि जे किरदार समेत मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। फील्ड मार्शल चयो त बलोचिस्तान में नौजवाननि लाइ सलाहियतुनि ऐं मौक़नि जी का बि खोट नाहे। बलोचिस्तान जो अवामी बलोचिस्तान जी तक़दीर बदिलाए सघे थो।

पीटीआई बानी के अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदरा पिम्स में तिबी मुआइनो कराए बीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण से हुकूमत खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करण जो ऐलान। पीटीआई रोडन रस्तन से एहतजाज करण से गड कौमी असेंबली तां इस्तीफा की भी धमकी दे छी। 27 सेप्टेम्बर से लॉन्ग मार्च वो सद भी बरकरार। इस्लामाबाद में पीटीआई ए अपोजिशन के बिन जमायतन की गडियल इजलास का मीडिया से गालंदे अगवान तो पीटीआई बानी के शफा अस्पताल मुंतकिल न करे हुकूमत अदालती फैसले से गड आईन ए कानून की भी तोहीन कई है। सुभाने तोहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराई वी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हुकूमती अमल का को जवाब न तो ठे तो असा इन ऐवान में वेठल हूं। जडे अदालती हुकूमत अमल कर मुश्किल है तो जमहूरियत कि हलंदी। सलमान अक्रम राजा हुकूमत शिफा अस्पताल बहरा हजूम गड थो कूड़ो बयान उठाया। हाँ फैसलो अवाम के करणो है तो हि केस अदालत में विड़जे या रोडन से।

0: पीटीआई बानीअ जो तिबी मुआइनो अलशफा अस्पताल न पर पिम्स अस्पताल में कयो वियो। वफाकी वज़ीर अता ताड़ जो इतराफ़। अता ताड़ जो चवण हो त डॉक्टर पारां तिबी तौर सेहतमंद करार ॾियण खां पोइ पीटीआई बानीअ खे सुबुह 5 वॻे ॿीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वियो। पिम्स में अलशफा अस्पताल जा डॉक्टर्स बि मौजूद हुआ। पीटीआई बानीअ जी भेण अज़मा ख़ान इलाज जे समूरनि मरहलनि दौरान मौजूद रही। पीटीआई कारकुननि जे करे जेका सूरत हाल रस्ते में ऐं अलशिफा अस्पताल ॿाहिरां पैदा कई वई उनखे नज़र में रखी पीटीआई बानीअ खे पिम्स अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। पार्लियामानी मामलनि वारे वज़ीर तारिक फज़ल चौधरीअ जो चवण हो त पीटीआई बानीअ जा ज़रूरी तिबी मरहला मुकमल थी विया। सिहत जे मामले ते सियासत न कई वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अक्सर वालदेन जो यो चवण हूंदो आहे त असां बार बार पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो जा कतरा छो पीआरियूं, जो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमानुल्लाह लयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं उन में का बि सुई इस्तेमालु न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मूज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
5: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
6: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
9: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
8: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
10: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
10: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
10: 03125257 86।
6: जी हा, 2315525786।
10: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन ये सवाल करते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद दिखता है तो फिर पोलियो वैक्सीन की जरूरत क्यों? तो मैं नाम डॉक्टर आरफा है और मैं सिविल हॉस्पिटल कराची में एज ए पीडियाट्रिशियन काम करती हूँ। पोलियो जो है वो बहुत खामोशी से फैलता है और जो बच्चा बाहर सेहतमंद दिखता है वो भी वायरस की जद में आए तो उसकी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। बच्चों को वैक्सीन लगाएं क्योंकि एक बार पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं, इससे बचाव से पोलियो वैक्सीन से किया जा सकता है। आपका बच्चे की उम्र अगर 10 साल से कम है तो आप पोलियो बूस्टर डोज लगवा सकते हैं और अगर आपका बच्चा इस मुहिम में वैक्सीन डोज से रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे बात करें 1166 पे।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अक्सर माण्हुनि जो सवाल हूंदो असांखे, साईं पोलियो जी वैक्सीन 10 सालनि ताईं छो थी ॾिनी वञे? त जेको असां वटि जेके ॿार आहिनि अक्सर कमज़ोर आहिनि, उन में इम्यूनिटी तमामु घटि हूंदी आहे, हाई रिस्क हूंदा आहिनि। उन खां अलावा असांजी एरिया हाई रिस्क आहे, ओवरऑल पूरो सूबो, पूरो पाकिस्तान। तंहिंजे करे तव्हांखे वैक्सीन जे लाइ उमिरि जी हदि कोन्हे। कंहिं बि जॻह ते वैक्सीन, कंहिं बि उमिरि ते पोलियो लॻी सघे थो, कंहिं उमिरि ते वैक्सीन करे सघे थी, पर रेशियो वधीक 10 सालनि खां घटि आहे। तंहिंजे करे असांजो रिक्वेस्ट आहे सभिनी खे बूस्टर डोज़ लॻाए।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज़ GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं ये कहूं कि ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, ना कि बंदूक की नोक पर शनाख्ती कार्ड निकालकर उसके हवाले से लोगों को बेदबी से शहीद करे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और इसी हवाले से केपीबी में दहशतगर्दी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि घुसपैठिए फितनल खवारिज दुश्मन ममालिक हैं, उनसे वो वसायल हासिल कर रहे हैं। मसायल का दंडोरा पीट कर बंदूक लेकर लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान छोड़े दुनिया के किसी हिस्से में अमन तो दूर की बात है, कत्ल वर्द का बाजार गर्म हो जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान में वो हमारे बेटे और बेटियां बुजुर्ग अगर वो अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, हमें उनको खुशामदेद कहना चाहिए।
2: बलोचिस्तान के दरपेश मसला गाल जरिए हल थे घुर्जन, जो मसलन की आड़ में बंदूक खड़े वो मोहबे वतन नो सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद में बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के खिताब, शहबाज शरीफ चो तो बलोचिस्तान ए खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पुठा दुश्मन मुल्क हथ है। असा फील्ड मार्शल से गजी कराची का चमन N25 शाराए तामीर कर रहा आयो, बदकिस्मती से मनसूबे से कम कदड़ मजदूर के शहीद किया पे वे। मजदूरी कदड़न के सुणप के बुनियाद कत्ल कर जायज ना है, बलोचिस्तान वसीलन से पे हक सूबे के आवाम जो है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर है तो बलोचिस्तान ए पाकिस्तान जो मुस्तकबिल एक हमेशा लाए गड है, फितना ख्वारिज ए फितना हिंदुस्तान दुश्मन अंसर जो प्रॉक्सीज हैं, जेके रियासत अवाम विच में विछोटू पैदा करने लाए इस्तेमाल थी रही हैं। दुश्मन जो समूरी साजिशों कौम की गडियल अजम ए रियासत की मजबूत ए फैसलाती रद्द अमल से नाकाम बणाईदी। ISPR मूजिब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बलोचिस्तान के अहम शख्सियत ए सियासी क्यादत की GHQ में मुलाकात। बलोचिस्तान के अमन अमान इस्तेहकाम ए तरक्की में नौजवान के किरदार समेत मुख्तलिफ मामलों के ख्याल की डे वठ। फील्ड मार्शल चो तो बलोचिस्तान में नौजवान ला सलाहत ने मौक की का कोट ना है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्स के ऑपरेशन दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना ख्वारिज ए फितना हिंदुस्तान जुड़ा दहशतगर्द मारजी वाया। ISPR मूजिब सिक्योरिटी फोर्सिस ए पुलिस बिन्हीं सूबन में गडियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कया। केपी के बनू उत्तर वजिस्तान औरतसे खैबर वन इलाकन में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखंदड़ 12 खारजी दहशतगर्दन के मारे वो, जडे तो बलोचिस्तान के मस्तोंग मच खुजदार पंजगोर वन इलाकन में बे ऑपरेशन दौरान 37 दहशतगर्दन के मारे वो। मारजी वेल दहशतगर्दन वटा हथियार AIDs ए मोटरसाइकिलू भी हथ कर दावा।
3: कानून है इनको छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे, अगर आप उसको राइट नहीं देते। मैं तो ऐसे चेयरमैन ये कहता हूं मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मजीद में कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट से बाहर आए, कोई है जो कोशिश कर रहा है कि हम मजीद ना रहे। सुप्रीम कोर्ट के कंधों पर अब भारी जिम्मेदारी आयद होती,
4: तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने डॉक्टर उस्मान ने शामिल होना। दूसरी बात यह थी कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गेट की हुजूम न खड़ा हो, बिल्कुल कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ, एक झूठा बयानिया बनाया गया है।
5: कल यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इन्हें अदालत की दरखास्त दाखिल करेंगे। पाकिस्तानी कौम को यह फैसला करना होगा कि ये मुकदमा कहाँ लड़ना है, अदालतों में लड़ना है या सड़कों पर लड़ना।
2: आए PTI बानी के अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदरा पिम्स में तिबी मुआइनो कराने बीहर अडियाला जेल मुंतकिल करते हुकूमत खिलाफ तो इन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करण जो ऐलान। PTI रोडन रस्तन से एहतजाज करण से गड कौमी असेंबली तां इस्तीफाउन की भी धमकी दई छी। 27 अक्टूबर से लॉन्ग मार्च वो सड भी बरकरार।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अक्सर वालदेन ही सवाल कंदा आयन त असन जदे एक दफो बारन के पोलियो जा खतरा प्यारिया आयन त वरी बिहर छो प्यारियो। मुंजो नालो मुफ्ती मोहम्मद अहमद आए। तो आसान जवाब यो आ ही बार भी असा वट अल्लाह ताला जी एक वड़ी नियामत आए। बारन जी सेहत जो ख्याल रखन लाजमी है, जरूरी आए। असा जे माहौल में पोलियो जो वायरस मौजूद आए। ही पोलियो बूस्टर बारन जी कुव्वत मुदाफ़त जे वधाण में मदद करे थी। 10 साल जी उम्र ताई जितरा भी बार आए उनन के ही बूस्टर जी इजाफी खुराक लगान लाजमी आए।
4: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
4: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331252576।
5: जी हाँ 2315525786।
4: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

बड़ा हूँ भाषा मत रात बने हूँ भाषा नचा नचा दिल दार काते समा पंच मजार ऐसी वैसी में तू बात कर मुझे सेना को ही मुलाकात कर तू अठगा तू अठगा तू अठ ठक ठक.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842।
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: पीटीआई बानिया जी अलशफा अस्पताल बदरा फिम्स अस्पताल में तिबी मुआयने बाद बीहर अडियाला जेल मुंतकिली। हुकूमत समूरी सूरत हाल जो जिम्मेवार पीटीआई के ही करार दे छो। वफाकी वजीर अता तार है अलशफा अस्पताल बहरा ए रस्तन से पीटीआई कारकुन गड थे वाली सूरत हाल के नजर में रखी पीटीआई बानिया के फिम्स अस्पताल आंदो वो जिते अलशफा अस्पताल के डॉक्टर्स ए उज़मा खान की मौजूदगी में पीटीआई बानिया जो मुआयनो कयो वो। डॉक्टर्स पीटीआई बाने की सेहत के मुकम्मल तौर ठीक करार दिनों जै बाद के सुबह जो 5 वगे बीहर अडियाला जेल मुंतकिल कयो वो। तारिक फजल चौधरी है पीटीआई बानी जो जरूरी तिबी मरला मुकम्मल थी व्या सेहत के मामले से सियासत न की वही है।
1: इनको छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे, अगर आप उसको राइट नहीं देते। मैं तो ऐसे चेयरमैन ये कहता हूँ मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में कोई है जो कोशिश कर रहे हैं कि हम पार्लियामेंट से बाहर आए, कोई है जो कोशिश कर रहा है कि हम मस्जिद ना रहे। सुप्रीम कोर्ट के कंधों पे अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है।
2: तो हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की क्योंकि वो मेडिकल रिकॉर्ड तो मुरतब ही नहीं हुआ, वो बोर्ड बना ही नहीं जिसमें डॉक्टर फैसल ने डॉक्टर उज़्मा ने शामिल होना। दूसरी बात यह थी कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के गेट पे हुजूम न खड़ा हो, बिल्कुल कोई हुजूम खड़ा नहीं हुआ, एक झूठा बयानिया बनाया गया है।
3: कल यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो इन्हें अदालत की दरखास्त दाखिल करेंगे। पाकिस्तानी कौम को यह फैसला करना होगा कि ये मुकदमा कहाँ लड़ना है, अदालतों में लड़ना है या सड़कों पर लड़ना।
0: पीटीआई बानिया के अलशफा अस्पताल मुंतकिल करण बदरा फिम्स में तिबी मुआयनो कराण बीहर अडियाला जेल मुंतकिल करण ते हुकूमत खिलाफ तो इन अदालत की दरख्वास्त दाखिल करण जो ऐलान। पीटीआई रोडन रस्तन ते एहतजाज करण सा गड कौमी असेंबली तां इस्तीफाउन की भी धमकी दई छी। 27 सेप्टेम्बर ते लॉन्ग मार्च वारो सद भी बरकरार। इस्लामाबाद में पीटीआई ए अपोजिशन के बेन जमायतन की गडियल इजलास का मीडिया से गालंदे अगुवान तो पीटीआई बानिया के शिफा अस्पताल मुंतकिल न कर हुकूमत अदालती फैसले से गड आईन ए कानून की भी तोहन कई है। सुबाने तोहन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराई वेंदी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर हुकूमती अमल का को जवाब न तो टे तो अस इन ऐवान में वेठल होजू, जैसे अदालती हुकूमत अमल कर मुश्किल है तो जमहूरियत कि हलंदी। सलमान अकरम राजा हुकूमत शिफा अस्पताल बारा हुजूम गड थो कूड़ो बयानियों ठाको, हाँ फैसलो अवाम के करणो है तो केस अदालत में विड़जे या रोडन। सुप्रीम कोर्ट जो फैसलो रिकॉर्ड से मौजूद वाजह कानूनी गलतियों से बदल है। पीटीआई बानिया के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के खिलाफ है। जेल कानून में कैदी के खानगी अस्पताल में दाखिल करण जो को भी तस्वुर ना है। अड़े फैसले से बया कैदी भी अड़े ही नोयत जहा मुतालबा कर शुरू कर छींदा। हुकूमत पीटीआई बानिया की अस्पताल मुंतकिली वाले फैसले खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त बीहर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराए छी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद पारा रजिस्ट्रार ऑफिस जै एतराज खत्म कर दाखिल कर नजरसानी दरख्वास्त में चो है तो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में कैदी की हालत गणती जोगी होजन जो को भी जिक्र न हो। अदालत के मायरन की राय वठण का सवाय सीधी रीत फैसलो न डेण घुर्जे। हा कैदी के हफ्ते में बेरा गैर मुल्की टेलीफोन कॉल की इजाजत डेण भी रूल्स खिलाफ है। अदालती फैसले से नजरसानी करें।

0: मां जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है।
1: लेकिन मैं आपको बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनकी उस सेहत को कोई मसला नहीं है, आंख का मसला था, अल्लाह के फजल से वो सेहत याब हो चुके।
2: कसम खड़ी चवान तो पीटीआई बानी की सेहत बिल्कुल ठीक है। सेहत के मामले के सियासत के बारे चाड़न न घुर्जे, दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ जो कौमी असेंबली में खिताब। ख्वाजा आसिफ चो तो पीटीआई बानी की अख बेहतर थी रही है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन लाइ भी इलाज जारी है। माजी में नवाज शरीफ की सेहत से मजाक उड़ाया वो हो, पीटीआई बानी पान भी मजाक उड़ाया जैसे केतर ही वीडियोज मौजूद आन, उन्हें हाँ एहसास थो हों तो बीमारी एक हकीकत होंगी है।

0: बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं ये कहूं कि ये पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन सूबा है तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन मसाइल की आड़ में अगर बंदूक उठा ली जाए तो वो कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कर सकता, ना कि बंदूक की नोक पर शनाख्ती कार्ड निकालकर उसके हवाले से लोगों को बेदर्दी से शहीद करे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है और इसी हवाले से केपीबी में दहशतगर्दी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं कि घुस बैठिए फितनल खवारिज दुश्मन ममालिक हैं, उनसे वो वसायल हासिल कर रहे हैं। वसायल का दंडोरा पीट कर बंदूक लेकर लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाए तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान छोड़े दुनिया के किसी हिस्से में अमन तो दूर की बात है, कत्ल वर्द का बाजार गर्म हो जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि बलूचिस्तान में वो हमारे बेटे और बेटियां बुजुर्ग अगर वो अपना रास्ता दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं, हमें उनको खुशामदेद कहना चाहिए।
1: बलूचिस्तान के दरपेश मसला गालन जरिए हल थियण घुर्जन, जो मसलन की आड़ में बंदूक खणे वो मोहब वतन नो सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ जो इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के खिताब। शहबाज शरीफ चयो बलूचिस्तान ए खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी पुठियां दुश्मन मुल्क जो हथ है। असा फील्ड मार्शल से गड़ी कराची का चमन N25 शाराए तामीर कर रहा आय। बदकिस्मती से मनसूबे से कम कदड़ मजदूर के शहीद किया पो वे। मजदूरी कदड़न के सुणप के बुनियाद से कत्ल कर जायज ना है। बलूचिस्तान वसीलन से पे हक सूबे के अवाम जो है, जडे चारे सूबा गड़ी हल्दा तद ही मुल्क तरक्की कद।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: एक मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद हमारे सेहतमंद बच्चे हैं। पोलियो बच्चों में उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है, मगर इससे बचाव मुमकिन है। अगर आपका बच्चा 10 साल से कम उम्र का है तो इस अगस्त उसे अपने करीबी सेहत मरकज लेकर जाएं और पोलियो बूस्टर डोज जरूर दिलवाएं। ये बूस्टर डोज महफूज, मुअस्सर, बगैर दर्द और बगैर सुई के है। मिलकर हम हर बच्चे को पोलियो से महफूज बनाएंगे। मिलकर हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएंगे।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा ॾींदा। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301 43 842।
9: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
7: जी हा, 2315525786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज़ GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अक्सर वालदेन जो यो चवण हों तो बार बार पंजे बारन के पोलियो कतरा छो प्यारियों

0: छो त असांजे ॿार पहिरीं पोलियो जा कतरा पी चुको आहे। मुंहिंजो नालो प्रोफेसर डॉक्टर अमान उलालयल आहे। मां ॿारनि जे शोबे में ख़िदमत अंजाम ॾियां थो डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस। बार बार पोलियो जा कतरा पीअण सां ॿार जी इम्यूनिटी जेका उहा बहितर थिए थी। हाणे जेका कैंपेन अचे थी जंहिंमें असां जेको पोलियो जो ॾींदासीं हुन में का बि सुई इस्तेमाल न थींदी बग़ैर कंहिं दर्द जे। वैक्सीन जेका पंहिंजे ॿार खे करायो त जीअं असांजो पाकिस्तान हिन पोलियो जहिड़े मुज़ी मर्ज़ मां जेके महफ़ूज़ रहनि।
1: अमड़ सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: ख़ुशख़बरी ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।